0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
3: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
2: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
3: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।

0: हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज,

0: फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
2: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
1: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a Uniform Civil Code bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 43 lives in the past 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Maximum deaths have been reported from Bhadohi district, where 15 people lost their lives. More than one dozen people are injured.

श्रोताओं, अगला देशभक्ति गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि हमारे जवानों की हिम्मत और भारत माँ के प्रति प्यार की कहानी है। हर लफ्ज़ में मिट्टी की खुशबू है और हर धड़कन में देश के लिए जज्बा।

0: श्रोताओं, बॉर्डर पर खड़े और देश के उन वीरों को सलाम, उनके हौसलों को नमन। इसी के साथ देशभक्ति का ये प्रोग्राम देशगान यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा।

0: खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
1: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी। और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली

0: से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई है। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
4: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी अब से कुछ ही देर में।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
5: श्रोताओं, कुछ वादे वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं और कुछ गाने उन वादों को हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं श्वेता लेकर आई हूँ कुछ वादे वफा से जुड़े बेहतरीन नगमे। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो प्यार में किए हर वादे की

ताजमहल के इस गाने के साथ प्रोग्राम का आगाज हुआ। श्रोताओं, कभी कभी दिल सिर्फ एक तसल्ली चाहता है, एक साथ निभाने का एहसास, और तब लबों पर आता है ये खूबसूरत गीत हाथ की सफाई। इस फिल्म से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज़।

हाथ की सफाई, इस फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। और अब जब वादे टूट जाते हैं तो दिल बस एक सवाल करता रह जाता है, जैसे ये गाना जो हमने लिया है, हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, और अब रिश्तों की गर्माहट और साथ निभाने की मिठास को महक दीजिए इस प्यारे से गीत के साथ, जो अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ फैमिली फिल्म से।

फैमिली फिल्म का ये गीत था। पूर्वा सुहानी प्रोग्राम श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से मेरे यानी श्वेता के साथ। मोहब्बत में एक डर भी होता है, कहीं साथ ना छूट जाए। इसी जज्बात को बहुत ही प्यार से बयान करता अगला गाना जो हमने लिया है, दिल तुझको दिया, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़।

हाथ की सफाई, इस फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, एक ऐसा नगमा जो हर सच्चे प्यार की आवाज़ है। खिलाड़ी फिल्म से हमने ये गाना लिया है, अलका याग्निक, अभिजीत की आवाज़।

तो श्रोताओं, मैं तो यही कहूंगी, गर्वादा कीजिए तो निभाइए। इसी गीत के साथ पूर्वा सुहानी फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। मैं श्वेता एक बार फिर हाजिर होंगी 8:45 पर ऐसे ही दिल को छू लेने वाले गीतों के साथ। बने रहिए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। सुबह के 8 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: रहेगा। इसके बाद वैश्विक विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
10: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी। शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले तीन दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले दो दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers' meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuanketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato' Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
0: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
12: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance, and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
13: Assam cabinet so passed uniform civil code. We customized that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of uniform civil code. The UCC bill will be laid before the assembly on 26th of May.
12: With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill. The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Director General of Foreign Trade has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to EU and US under CXL and TRQ quota, the Advance Authorization Scheme, and government-to-government shipments to meet food security needs of other countries. Consignments already in the physical export pipeline are also exempted. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains, and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. More in this report.
14: In a major relief for farmers and traders, the government of West Bengal has lifted restrictions on the export of agricultural goods to other states. According to a notification issued by the Department of Agricultural Marketing, items such as potatoes, onions, vegetables, fruits, food grains and oil seeds can now move freely across state borders without any barriers. District administrations, police and transport authorities have been directed to ensure smooth implementation of this order. Chief Minister Shubhendu Odhikari, speaking at Nabarno yesterday, said the decision will benefit small and marginal farmers as well as traders. He emphasized that farmers will now receive fair prices for their produce. The Chief Minister also warned that strict action will be taken against officials if goods-laden vehicles are unnecessarily stopped or harassed at interstate borders. This move is expected to ease the way for agricultural exports and reduce the difficulties faced by farmers and traders in West Bengal. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
12: The government has given 1 year extension to Director of Central Bureau of Investigation, Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, the Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond the 24th of this month. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
15: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
12: More from our correspondent.
16: India and the UAE share one of the most significant energy partnerships in the region. The UAE is currently the fourth largest source of crude oil for India, meeting nearly 11% of the country's total requirement. On liquefied natural gas, Indian companies have locked in long-term supply deals with Abu Dhabi's ADNOC Gas for a cumulative 4.5 million tons per year. Now let's hear from Asim Mahajan, Additional Secretary, Gulf.
17: We share a very vibrant partnership in the area of energy. The UAE is an important partner in our energy security. Last year, the UAE was the fourth largest source of crude oil, meeting nearly 11% of our requirement. In the area of LNG, Indian companies and the UAE Abu Dhabi National Oil Company ADNOC Gas have entered into long-term supply contracts for cumulative of 4.5 MMTPA LNG to India.
16: The linking of India's UPI payments platform with UAE's ERNI system has already transformed cross-border transactions for businesses and Indian diaspora. The UAE remains India's third largest trading partner and the seventh largest cumulative source of foreign investment over the past 25 years. As West Asia navigates one of its most turbulent periods in recent memory, Friday's meeting in Abu Dhabi is being seen as an important anchor of stability and long-term strategic intent for both nations. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
12: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock,

0: Follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 60 lives in the last 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. More from our correspondent.
1: A sudden change in weather conditions has caused widespread devastation across the state, with storms, heavy rain and lightning strikes claiming many lives. 17 people died in Prayagraj, while 15 in Bhadohi district, 10 in Mirzapur, 9 in Fatehpur, 5 in Badayu, and 4 deaths are reported in Bareilly district. More than 100 people got injured also and have been admitted to different hospitals. Maximum deaths happened due to incidents of lightning, wall collapse and trees falling on people and vehicles due to dust storms and hailstorm. Incidents of falling of electric poles and trees have reported from different districts affecting the power supply and road traffic. Hailstorm accompanied with rain have damaged the crops badly. Chief Minister Yogi Adityanath held meeting with all the senior officials and asked them to provide compensation to the affected people in next 24 hours. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: Meanwhile, India Meteorological Department has forecast heat wave to severe heat wave conditions at isolated places in West Madhya Pradesh and West Rajasthan today. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra will also witness heat wave conditions at isolated places. Meanwhile, the weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya today. According to IMD, heavy rain is also predicted over Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 3 days. Places over Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Odisha, West Bengal and the northeastern states are expected to experience thunderstorms and lightning today. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly visited the United Arab Emirates and met its president during the war with Iran. According to a statement from Netanyahu's office, the Israeli Prime Minister held talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The statement described the meeting as leading to a historic breakthrough in relations between Israel and the UAE. However, no details of the breakthrough were disclosed. In IPL cricket, Virat Kohli created history and broke several records during Royal Challengers Bengaluru's 6-wicket victory over Kolkata Knight Riders in Raipur last night. Kohli scored an unbeaten 105 runs off 60 balls, including 11 fours and 3 sixes. It was his 9th IPL century, the most by any player in the tournament's history. During his innings, Kohli also completed 14,000 T20 runs, becoming the first Indian and the fastest player ever to reach the milestone, breaking Chris Gayle's record. He also crossed 400 runs this IPL season. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Saira. Newspapers have widely noticed the hike in import duty of gold and silver after PM's appeal, as also US President Donald Trump's visit to China. Import duty on gold, silver hiked to 15%, writes Financial Express, while in the Sun Times headlines, in first step after PM's appeal, gold silver duty raised to 15%. The Asian Age writes, BRICS foreign minister set to begin talk in Delhi today. In the Neat paper leak case, the Tribune writes, Neat probe traces guest paper to Kerala, CBI nabs 5 suspects. The Statesman headlines, Vijay government wins confidence vote, gets backing of rebel AIADMK MLAs. The same newspaper also informs decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran deputy foreign minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on 3-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, deal maker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOneAIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे, उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
4: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स एट द रेट 20 इस्तेहकाम इख्तरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में असलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
3: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक़िद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकानी असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज़्यादा शादी, विरासत और बग़ैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाज़े किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। حکومت نے چینی کی برآمدات پر فوری طور پر ستمبر 2026 تک یا مزید احکامات جاری ہونے تک پابندی عائد کر دی ہے، جس میں خام چینی، سفید چینی اور ریفائنڈ چینی شامل ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے برآمدی پالیسی کو محدود کے زمرے سے ممنوع کے زمرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تاہم یہ پابندی سی ایکس ایل

लुटेरे फिल्म से अभी आपने कार्यक्रम का पहला गाना सुना। अगला गाना हमने लिया है बर्फी फिल्म से, रेखा भारद्वाज की आवाज़ में, गीतकार सईद कादरी और संगीतकार प्रीतम।

बर्फी फिल्म से अभी आपने रेखा भारद्वाज को सुना। श्रोताओं, अगला गाना है शंघाई फिल्म, 2012 में आई इस फिल्म से। आवाज़ अरिजीत सिंह, नंदिनी शेखर की, लिरिक्स कुमार के और म्यूज़िक दिया है विशाल शेखर ने।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। म्यूज़िक दिया था शंकर एहसान लॉय ने, गाने के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और इस गीत को आवाज़ दी थी अलीसा मेंडोसा और मोहित चौहान ने। श्रोताओं, अब गाना आ रहा है पापोन की आवाज़ में दम लगा के हईशा इस फिल्म से।

दम लगा के हईशा, इस फिल्म से भी आपने पापोन की आवाज़ में खूबसूरत नगमा सुना। कार्यक्रम का आखिरी गाना हमने लिया है गैंग्स ऑफ वासीपुर इस फिल्म से। गायक, कलाकार, गीतकार, संगीत निर्देशक पीयूष मिश्रा। आइए सुनते हैं।

0: गैंग्स ऑफ वासेपुर, इस फिल्म से भी आपने पीयूष मिश्रा को सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का प्रोग्राम हिट सुपर हिट यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल के लिए आइए चलते हैं लखनऊ स्टूडियो।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
3: भगवान बुद्ध की मां पर निर्माण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव ऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है।
4: भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है।
3: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर संपन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिल नगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
5: पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जन सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें।
3: कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर वी के मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिड़किया शमशान घाट पर किया गया, जहाँ भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
2: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
6: सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत गोरखपुर के दो प्रमुख स्टेशनों से 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या, बनारस, सोनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन

0: के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4-लेन 6-लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान आयुष विश्वविद्यालय चिड़ियाघर बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2-लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने GDA के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
1: गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है, ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है।
0: पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंग बली का प्रसाद ग्रहण किया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 337.0 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी गोरखपुर के संग। आइए सुनते हैं देश गान।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।

0: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, उर्दू अदब में अफसाने की अहमियत एक मुसल्लम हकीकत है। अफसाना उर्दू नसर की एक अहम और मकबूल सिंफ है, जिसने न सिर्फ अदब को वसत बख्शी है बल्कि मुआशरती, अखलाकी और नफसियाती मसाइल को भी बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। सामीन, अफसाना मुख्तसर होने के बावजूद अपने अंदर एक मुकम्मल जिंदगी समय हुए होता है, जिसमें इंसानी जज्बात, एहसासात और तजर्बात की भरपूर अक्कासी की जाती है। यही वजह है कि अफसाना निगारी ने उर्दू अदब को नई जिहत अता की है। इब्तिदा में दास्तान और नावल का रिवाज ज्यादा था, लेकिन वक्त के साथ साथ अफसाना अपनी सादगी, इख्तिसार और असर अंगेजी की वजह से मकबूल तरीन सिन्फ में शुमार हुआ। दोस्तों, अफसाना अपने सामे और कारी को कम वक्त में ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। मजीद ये कि अफसाना इंसानी नफसियात की अक्कासी का एक बेहतरीन जरिया है। इसमें किरदारों के अंदरूनी एहसासात, कश्मकश और जज्बात को बहुत ही बारीकी से बयान किया जाता है, जो अपने सुनने और पढ़ने वालों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि उर्दू अदब में अफसाना एक अहम और मुअस्सिर सिन्फ है, जो न सिर्फ अदबी हुस्न रखती है बल्कि मुआशरती इसलाह का भी जरिया है। इसकी मकबूलियत और इफादियत ने इसे उर्दू अदब का एक लाजमी जुज बना दिया है। इसी के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक अफसाने का। मौजू है दुनिया के नक्शे में आदमी। अफसाना निगार हैं जनाब शाहिद अख्तर साहब।
1: वो जाने कब से जाग रहा है, उसे नहीं मालूम था। आंखों के सामने जिस तरह उसका बाप बेखबर और गहरी नींद सो रहा था, ऐसी नींद तो वो कभी नहीं सो पाया, जबकि वो तो अभी बहुत छोटा था। देसी शराब के भपकों के साथ जोरदार, बल्कि डरा देने की हद तक खर्राटों की बेहंगम आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थीं। मुजीब अक्सर सोते में खौफ की वजह से उठ जाता। उसे लगता कि अब्बा अभी उठकर उस पर हमला कर देगा। ये खौफ उस पर हमा वक्त तारी रहता। माँ और खुद पर तशद्दुद की वजह से मुजीब को अपने बाप से नफरत थी, मगर वो अभी इतना छोटा था कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मुजीब दो भाई और तीन बहनों में सबसे बड़ा था। अब के मुहर्रम में वो 15 का हो जाएगा, ऐसा माँ उसे बताती थी। कुछ वक्त से मुजीब को लगने लगा था कि वो इस घर के लिए तो पैदा नहीं हुआ। उसके जहन में पढ़ाई का कीड़ा रेंग रहा था। स्कूल, कॉपी, किताबें भी तो कोई चीज होती हैं। इन नामों से नावाकिफ तो शायद वो भी रहता, मगर अक्सर माँ उसे अपने साथ काम पर ले जाती कि वो अपने बाप के अताप से बचा रहे। मुजीब की माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा और ठीकरे के साफ करने का काम करती थी। साथ में जाने की वजह से मालिकों के बच्चों के पास स्कूली बस्ते और कॉपी किताबें देखकर उसके अंदर भी पढ़ने की ख्वाहिश बेदार हो गई। एक दिन ये बात उसके बाप के कानों तक भी पहुंच गई और बस वो हत्ते से उखड़ गया। मारते वक्त उसकी जबान से यही जुमला निकल रहा था कि तेरे भेजे में पढ़ने की बात किसने डाली है। वो चाह रहा था कि एक बार ये माँ का नाम ले ले तो उसे पिटाई का बहाना मिल जाए। हालांकि ये सच नहीं था, और अगर वाकई में माँ ने तालीम के लिए रगबत दिलाई भी होती तो वो अम्मी का नाम तो कभी नहीं लेता। मुजीब को इस बात पर अलबत्ता हैरानी हुई कि अब्बा को पढ़ाई से इतनी चिढ़ क्यों है। कितनी बार वो मुजीब की अभी किताबें फाड़ चुका है। मुजीब के हौसले उसके बाद भी पस्त नहीं हुए। हर बार नए अज़्म के साथ वो घंटों लगाकर किताबें फिर से जोड़ देता, और उसके बाद मुजीब को जो खुशी मिलती वो कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। किताब की कदर कीमत घर में मुजीब के अलावा कोई जानता भी नहीं, और वो माँ अपने मालिकान से भीख की तरह मांग कर लाते और बाप इस तरह फाड़ कर फेंक देता। वर्क से वर्क मिलाना और तमाम सफात के टुकड़े सलीके से जोड़ देना, फिर इस डर और एहतियात से कहीं छुपाना कि अब्बा के हाथ न लगे। एक कमजोर सी अम्मी जिसकी दस्तरस में कुछ भी नहीं था, तालीम की अहमियत से वो भी वाकिफ नहीं थी, मगर वो मुजीब की राह का रोड़ा नहीं बन रही थी। उसके अंदर ये ख्वाहिश पर अपने लगी थी कि पढ़ लिख कर कहीं बाबू साहब जैसा बन जाए तो उसके दरिद्र दूर हो जाएं। इस एहसास के साथ चेहरे पर चमक सी आ जाती, उसकी खुशियों में बहुत इजाफा हो जाता। बहुत जल्द वो वक्त आ गया जब वो रवानी से पढ़ने और इमला लिखने भी लगा। अपनी इर्तका के बारे में वो माँ को बताता रहा। अम्मी को आंखों में कुछ ख्वाबों کے عکس تیرتے دکھائی دینے لگے۔ بچوں کو پالنے میں امی جس اذیت سے گزر رہی تھی مجیب کو بخوبی اندازہ تھا۔ وہ اپنی ماں کی ہمت افزائی کرتا رہا، جلد ہی اس مشکل سے زندگی سے چھٹکارا دلوا دے گا۔ کمرے میں دو گھنٹے سے مجیب ابا کے خراٹے مسلسل سن رہا تھا۔ ماں اتنا تھک جاتی ہے کہ پڑھنے کے بعد اسے کچھ ہوش ہی نہ رہتا۔ اتنی غربت تھی کہ وہ کچھ بھی خریدنے کے لیے سوچتے رہتے۔ امی کو کسی نے نئی رضائی دی تھی جو انہوں نے مجیب کے حوالے کر دی۔ بہت شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی، اس نئی رضائی میں اس کے دو بھائی اور ایک بہن بھی آسانی سے سو جاتے تھے۔ ماں کام کرنے والے گھروں سے کھانے کی چیزوں کے علاوہ کچھ اور دیگر اشیاء بھی لے کر آتی، یہ سب اس کے بچوں کے لیے خوش ہونے کے بہانے بن جاتے۔ دو دن پہلے مجیب کے ناپ کی ایک جیکٹ لے آئی تھی جسے وہ سوتے وقت بھی نہیں اتارتا کہ مبادہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ دو دن سے مجیب کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ فکر مند تھا اور افسردہ بھی۔ اگر کچھ بننا ہے تو اسے گھر چھوڑ کر کہیں جانا ہوگا، ورنہ یہاں اس کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ لیکن امی اور چھوٹے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جانا کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ وہ اسی بات کو لے کر تذبذب میں تھا۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شہر سے باہر جانے سے پہلے ایک دن کے لیے گھر سے غائب ہو کر دیکھے۔ آگے کیا کرنا ہے یہ ایک دن کی فراری کے رد عمل کے بعد طے کیا جائے گا۔ نصف رات گزر چکی تھی، مجیب نے لحاف سے سر باہر نکالا۔ گھر میں گھڑی یا موبائل نہیں تھا کہ وقت کا اندازہ لگایا جا سکے، یہ تو اسے معلوم تھا کہ اس کا وقت اچھا نہیں چل رہا ہے۔ مجیب بہت احتیاط اور خاموشی سے اٹھا۔ ڈبے میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، اس نے اپنی جیب کے حوالے کیے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا اسی کو کہتے ہیں۔ بہت آہستگی سے کنڈی کھولی اور باہر نکل کر دروازے بند کیے اور گلی میں آتے ہی قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ چلتے وقت ابا کا مفلر بھی اٹھا لایا تھا۔ لیمپ پوسٹ کی روشنی چھن کر گلی کے نکڑ تک آ رہی تھی۔ پیچھے والی گلی سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جلدی اسے سواری مل گئی جو اسٹیشن جا رہی تھی، حالانکہ مجیب نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ اسے جانا کہاں ہے۔ فی الحال اسے یہاں سے نکلنا تھا اور اس وقت اسٹیشن پر روشنی اور بھیڑ بھاڑ ہوگی، وہاں پہنچ کر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سناٹے کی وجہ سے 10 منٹ میں وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں کی چکاچون اور شور شرابے میں وہ کھو سا گیا۔ اسے یہ آزادی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور یہ تماشا دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد اس کا دھیان گھر کی طرف گیا۔ ابھی تو سب سو ہی رہے ہوں گے، وہ سوچ رہا تھا۔ اس کے آنے سے صرف امی پریشان ہوں گی اور بھائی بہن بھی، ابا کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچانک ہفتے بھر پہلے کی گئی ابا سے بات اسے یاد آ گئی، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ بتا کہ پڑھائی کا بھوت کیوں سوار ہوا ہے، پڑھ لکھ کر آخر تو کیا کرے گا، تیرے بھیجے میں چل کیا رہا ہے۔ چند لمحوں تک وہ ابا کے سوالوں پر غور کرتا رہا، پھر بولا کہ اگر سچ میں کچھ پڑھ لکھ گیا تو آپ کو ایک دن حیران کر دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی، حیران تو ابھی بھی کیے ہوئے، اس دن آپ کو بہت اچھا لگے گا اور غصہ بھی ختم ہو جائے گا شاید۔ آخری لفظ ہونٹوں میں دب کر رہ گیا۔ ایک آدمی اس کے سامنے اخبار کا بنڈل پٹک گیا جس سے اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔ دو لوگ آ گئے اور انہوں نے پیکٹ کھول کر اخبار بیچنا شروع کر دیا۔ مجیب نے سکہ نکال کر اس آدمی کی طرف بڑھایا۔ اس نے مجیب کو زیادہ غور سے دیکھا، پھر سکے کی طرف۔ پڑھ لیتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں سناؤں؟ مجیب کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس کے اندر خوشی اور فخر کے انار پھوٹ رہے تھے۔ پورا اخبار اس نے وہیں بیٹھ کر ختم کیا۔ ایک نئی صبح اس کے سامنے تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا، ایک چائے اور دو بسکٹ لیے۔ اتنی دیر میں یہ سوچ لیا تھا کہ اب کہاں جانا ہے۔ وہاں سے جاگرز پارک زیادہ دور نہیں تھی، وہ اسی طرف نکل آیا۔ 3 گھنٹے بعد وہ پارک سے باہر نکلا تو باہر دائیں طرف ایک آدمی چٹائی پر کتابیں رکھ کر بیچ رہا تھا۔ یہ کوئی نصاب یا ادب سے متعلق کتب نہیں تھیں، بلکہ بچوں کے لیے ڈرائنگ اور معلومات میں اضافہ کرنے والی کتابیں تھیں۔ مجیب ایک دم ٹھہر گیا، سر ورق دیکھ کتاب کے موضوع اور مواد پر غور کرتا رہا۔ ایک کتاب آخر اس نے اٹھائی ہی لی۔ کتاب کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھے، مختلف صوبوں اور ممالک کے نقشے وغیرہ کے ساتھ جغرافیائی اور تاریخی معلومات کے حساب سے یہ کتاب اسے بہت اہم اور دلچسپ لگی۔ اس نے قیمت دریافت کی اور ادا کر دی۔ اس کتاب میں اس کی پسند کی اور بھی خاصی چیزیں موجود تھیں۔ کتاب خرید کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخری صفحے پر ورلڈ میپ یعنی دنیا کا نقشہ موجود تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر ٹہلتا بھٹکتا رہ کر امی اور بھائی بہنوں کی یاد بھی ستاتی رہی۔ واہی تواہی گھومتے پھرتے دن گزر گیا۔ بھوک لگی تو کچھ کچا پکا کھا لیا اور پھر آگے سفر پر۔ شام تک پیسے بھی ختم ہو گئے۔ کسی حد تک گھر سے جانے کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا، اب گھر کی فکر بھی بڑھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ابا اسے بہت بری طرح پیٹے گا، پٹائی کرے گا، لیکن ایک دن اپنے طور پر آزادی سے گزارنے کی خوشی کے عوض تھوڑی سی مار کھا لینا خسارے کا سودا نہیں تھا۔ کتاب اور اخبار مضبوطی سے پکڑے وہ ایک ٹیمپو میں بیٹھ گیا۔ और जरा ही देर में घर के करीब भी आ गया। आवाज देकर उसने टेम्पो को रुकवाया और फुर्ती से उधर का सामने वाली गली में दौड़ लगा दी। ड्राइवर जब तक मामला समझ पाता वो रूपोश हो गया। 10 रुपए के लिए अब वो क्या पीछे भागता, वो गाड़ी लेकर आगे चला गया। मुजीब घर में दाखिल हुआ तो अम्मा ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया और प्यार करने लगी। भाई बहन भी करीब आ गए। बाप जमीन पर बैठा उसे ही देख रहा था। मुजीब ने नजरें मिलाने से गुरेज किया। उसे मालूम था कि वहां नफरत और इखारत के सिवा और कुछ न होगा। माँ ने पूछा कि कहां और क्यों चला गया था। उसने तमाम दिन की तफसीलात अम्मी को बतसुना दी। बाप जो इतनी देर से बैठा सारा तमाशा देख रहा था, अब उसके उठने की बारी थी। वो जैसे ही उठा माँ मुजीब के सामने डटकर खड़ी हो गई। खबरदार, जो मज्जू को हाथ भी लगाया, मुझे जितना मारना है मार ले, मगर मुजीब पर अब हाथ नहीं उठाना, वरना इस बार घर से ही अकेला नहीं जाएगा। शौहर ने बीवी का ये रूप और तेवर पहले कभी नहीं देखा। उसका फौरी तौर पर असर भी हुआ और वो अपनी जगह जाकर फिर से बैठ गया। इस वाकये को गुजरे एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन मुजीब वो नक्शे वाली किताब खोले बैठा हुआ था और दुनिया के नक्शे को देखकर दुनिया को समझने की अपने तौर पर कोशिश कर रहा था। उसका इरादा था कि वो इस नक्शे में अपने तौर पर रंग भरकर दीवार पर लगा देगा। ये ख्वाहिश पूरी होने से पहले अब्बा ने किताब छीन ली और उसके टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। नशे की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अब्बा घर से बाहर निकल गया। इस बार मुजीब के आंसू खुश्क हो गए थे और ये जख्म उसकी रूह पर लगा था। किसी तरह उसने तमाम टुकड़े यकजा किए और फिर बड़ी तवज्जो और इनमाक से जोड़ने बैठ गया। रोते हुए उसकी हिचकियां बन गई थी। अब्बा को क्या मालूम के कागज के इन टुकड़ों में मुजीब की जान बसी है। 15 मिनट बाद अब्बा घर वापस आ गया। वो जुड़ा हुआ नक्शा फिर से उसकी आंखों के सामने था। अब्बा का तो दिमाग घूम गया कि इतनी सी देर में ये कैसे जुड़ सकता है। इतने सारे टुकड़े बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जोड़े गए थे, ये दूसरी किताब तो नहीं, उसने फौरन खुद से सवाल किया, लेकिन जोड़ सामने दिख रहे थे। अब्बा का नशा कमजोर पड़ गया मगर हैरानी और बढ़ गई थी। वो सोच रहा था कि इतने कम वक्त में तो ये काम मुमकिन नहीं। वो जाहिल और शराबी जरूर है मगर इतनी समझ तो रखता है। तूने ही जोड़ा है, उसने मुजीब से पूछा। मुजीब ने इस बात में गर्दन हिला दी। कैसे? अब्बा के सवाल पर हैरत और इस्तेजाब वाजे था। अब्बा, मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मैं आपको हैरान कर दूंगा। हाँ, अब्बा की आंखों में तहय्युर बिदर आया। आज वही दिन है और ये कोई जादू वादू नहीं, कलाकारी भी नहीं। तो फिर? अब्बा की हैरत में तजस्सुस आ गया। मुजीब ने पहली बार उसकी आंखों में झांका, वहां नफरत या गुस्सा नहीं था। वो आगे बोला, अब्बा इस कागज के दूसरे तरफ एक आदमी का फोटो है। मैंने बस उस आदमी को जोड़ा है। मुझे पता था कि आदमी ठीक हो गया तो ये दुनिया का नक्शा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब्बा की आंखें शायद इससे ज्यादा नहीं फैल सकती थी। पहली बार वो पूरे होशो हवास में था। मुजीब ने आज वाकई अब्बा को हैरान कर दिया था।
0: सामीन, अभी आप दुनिया के नक्शे में आदमी के उन्वान पर एक अफसाना समात फरमा रहे थे। अफसाना निगार थे जनाब शाहिद अख्तर साहब। और अब महफिल के माहौल को तब्दील करते हैं और कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं मोहतरमा शगुफ्ता अंजुम साहिबा का ये उम्दा कलाम।
2: एक मतला एक शेर हाजिर करती हूँ।

0: विचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत के आज के प्रोग्राम में कलाकार हैं सोनू निगम और हमने जान एल्बम से कुछ नगमे लिए हैं।

तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज़ में कुछ गीतों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। समय है समाचारों का।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान को उपज का लाभकारी मूल्य करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तेल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रोग्राम गाते गुनगुनाते बस अब से कुछ ही देर में।

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: गाते गुनगुनाते, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का मैं श्वेता इस्तकबाल करती हूँ। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम की आज की प्लेलिस्ट ऐसी है कि हमने एक ही फिल्म से दो सुपरहिट गाने लिए हैं, जो उस फिल्म की यादों को फिर से ताज़ा करेंगे और आपको यादों के खूबसूरत सफ़र पर ले चलेंगे। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं और हमने पहली फिल्म ली है रावण।

रावण फिल्म से अभी आपने कार्यक्रम के दो बैक टू बैक गाने सुने। श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म जूली की। एक ऐसी फिल्म जिसके गाने आज भी दिल को बहुत ही सॉफ्टली टच करते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक रोमांस, इमोशन और यूथफुल मेलोडी का खूबसूरत संगम है। राजेश रोशन के मधुर संगीत और दिल को छू लेने वाले बोल जूली फिल्म को सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बनाते बल्कि एक म्यूजिकल याद बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये दो नगमे।

जूली फिल्म के ये दो गाने थे। अब जिक्र करते हैं मर्डर टू फिल्म का। श्रोताओं, एक ऐसी फिल्म जिसका म्यूजिक अपनी इंटेंसिटी और सोलफुल मेलोडी के लिए खास पहचान रखता है। इस फिल्म के गाने सिर्फ पॉपुलर ही नहीं हुए बल्कि यंग लिसनर्स के दिलों की धड़कन बन गए। रोमांटिक इमोशन, दर्द भरे एहसास और मॉडर्न बीट्स का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस एल्बम को अलग बनाता है। इस फिल्म से दो गाने बैक टू बैक आपके लिए

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: गाते गुनगुनाते इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से, श्वेता के साथ। और अब एक खूबसूरत म्यूजिकल सफर पर फिल्म परिणीता के साथ चलते हैं। श्रोताओं, इस फिल्म का संगीत, मेलोडी, नज़ाकत और पुराने दौर की मिठास से भरा हुआ है। शांतनु मोइत्रा के सोलफुल म्यूजिक और खूबसूरत लिरिक्स ने परिणीता के गानों को टाइमलेस बना दिया है। ये वो नगमे हैं जो धीरे से दिल में उतरते हैं और हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। आइए सुनते हैं दो गाने।

अब बारी है फिल्म कलाकार की। एक ऐसी फिल्म जिसके गाने में 80 के दौर की मिठास और रोमांस की खास महक महसूस होती है। इस फिल्म का म्यूजिक श्रोताओं दिल को हल्का सा नॉस्टैल्जिक बना देता है, जहां हर धुन प्यार और सपनों की कहानी कहती नजर आती है। कलाकार फिल्म के गाने आज भी उन्हीं एहसासों के साथ सुने जाते हैं जैसे पहली दफा दिल के ने किसी मेलोडी को महसूस किया।

0: श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम की आज की प्लेलिस्ट ऐसी थी कि हमने एक ही फिल्म से दो सुपर हिट गाने लिए और आपको एक बार फिर यादों के सफर पर ले गए। इसी के साथ फिल्म संगीत का प्रोग्राम गाते गुनगुनाते यहीं समाप्त होता है। आज का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया मैंने, यानी श्वेता ने, और कार्यक्रम प्रसारित किया गया आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: ये आकाशवाणी गोरखपुर है। दिन के 11 बजने वाले हैं। समय है समाचारों का, जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे अब से कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं।

0: बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चौथे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक की वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कलाकार में आज के कलाकार हैं रजनी गुप्ता।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में अभी आप रजनी गुप्ता के स्वर में ये गीत सुन रहे थे, देवी गीत। आइए इन्हीं के स्वर में सुनते हैं ये गीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में अभी आप रजनी गुप्ता के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे और अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आइए फिर एक बार सुनते हैं रजनी गुप्ता को।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए रजनी गुप्ता के स्वर में ये गीत।

अभी आप रजनी गुप्ता के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोक रंग समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं और आइए सुनते हैं गीत संगीत।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: और आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि में, लता मंगेशकर की आवाज में सनी फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जाने क्या बात है। लाखों युवा दिलों की धड़कन कहनी जाने वाली ये फिल्म थी सनी। ये 1984 में बनी यह फिल्म सनी देओल और अमृता सिंह पर फिल्माई गई थी। इस फिल्म का गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था आरडी बर्मन ने और अपनी खूबसूरत आवाज़, मनमोहक आवाज़ को दिया था लता मंगेशकर जी ने। दोस्तों, इस प्यारे से गीत को जब भी हमारे युवा दिल सुनते थे तो उस समय उनके दिल में एक अजीब सी हलचल सी होती थी फिल्म सनी के लिए। और आइए ऐसे ही धड़कते दिल का एक

अभी आप उत्सव फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी।
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओ, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओ, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी,
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: घास घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता,

0: यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
3: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
4: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं,
3: आजा खेलते हैं।
4: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
5: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
4: अच्छा वो क्या?
5: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
6: हाँ दूसरा क्या?
5: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
3: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: तुसी फौज में हो ताया जी?
1: हाँ पुत्तर।
0: छट्टी आए हो? तुसी फौज विच की कर दे हो?
1: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हाँ।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
1: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
1: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
5: Ah!
3: जलाल,
2: उधर से दुश्मन आ रहे हैं। फायरिंग।

0: ही नहीं, यही रोक कर रखना। मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में कुछ फिल्मी अंदाज। ऐसे होते हैं कि जब सुनने में दिल थाम के बैठना पड़ता है। आइए इस गीत को सुनते हैं। कहते हैं जब कोई बात बनने को होती है तो अपने आप कुछ बातें बन जाती हैं। तो आइए जुर्म फिल्म का ये गीत सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में।

कहते हैं बात कितनी भी बिगड़ी हो, लेकिन साथ देने वाले साथी, दोस्त, मित्र यदि सही मिल जाए तो बिगड़ी हुई बातें बन जाती है। जुर्म फिल्म में अभी आपने इस गीत को सुना, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। और आइए सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

मशहूर गीतकार संतोष आनंद के लिखे हुए गीत कहते हैं कि जिंदगी के हर पहलू को इतनी खूबसूरत ढंग से लिखते थे कि वास्तव में उसे पढ़ने और लिखने का अंदाज ही अलग था। उनके गीतों को जब पढ़ा जाए और सुना जाए तो सचमुच दिल ही कहता है कि मैं ना भूलूँगा, मैं ना भूलूँगी। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत उनकी ऐसी रचना थी कि जो जीवन में कभी नहीं भूला जा सकता है। संगीत इस फिल्म को दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और अपनी खूबसूरत आवाज़ से इस गीत को आनंदित किया था मुकेश और लता मंगेशकर जी ने। और आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अगर तुम न होते फिल्म का ये गीत सुन रहे थे, और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

अभी आप आशा भोसले की आवाज में फिल्म मेरी सनम का ये गीत सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गाने सुहाने समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं और आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अभिजीत सावंत।

0: अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने
1: क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: और आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभिजीत सावंत को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप अभिजीत सावंत को सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप लखनऊ से इलाकाई खबरें सुनेंगे।

0: हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमनो अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और ज़रई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
1: भारत का पहला MRO वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर छा सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये अब।
0: गाजियाबाद में मुनाक़िदा प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज NDRF की खिदमत के लिए जो अलामत दी गई है वो NDRF के साथ SDRF पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी, NCC, NSS और हज़ारों की तादाद में खिदमत में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि NDRF के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबिना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम अज कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबिना की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ज़रई तनु की हौसला अफजाई होगी बल्कि खुशहाल किसान, मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को भी तकवीत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए MSP में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाजा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बुहरान के तनाजुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इकदाम को तेज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अलामती कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले के साइज में नुमाया कमी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने काफिले के साइज निस्फ से कम कर दिया है। इस तनाजुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से वजीर आजम की कॉल में शामिल होने की अपील की। वजीर आला ने उन पर जोर दिया कि वो ईंधन की खपत को कम करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक आला सतही मीटिंग में हिदायत दी कि वजीर आला और वुजरा वगैरह के बेड़े में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। दरियस्त असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने असेंबली की पार्लिमानी कमेटियों के पहले से तयशुदा तमाम मुतालती दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी तौसी शुदा काबिना की पहली मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने किफायत शारी तवानाई के तहफ़ और जिम्मेदाराना वर्क कल्चर को फ़रोग देने के लिए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत न सिर्फ एक मुआशी ज़रूरत है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। वजीर आला ने हिदायत दी कि सेक्रेटरीट और डायरेक्ट्रेट में एयर कंडीशनर के दर्ज हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखा जाए, कुदरती रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और बिजली का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक किया जाए। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर के इजाफे का ऐलान किया। तरमीम शुदा कीमतें आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के हादसात में तकरीबन 89 अफराद हलाक हो गए। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया। तलबा सरकारी वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपने नतायज दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
1: मैगजीन कहकशां के पहले सफ़े पर समाज फरमाइए। ये मुख्तसर तकरीर मौजू है वजीर आजम का प्रोग्राम स्वच्छता ही सेवा है। सामईन, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करने से सेहतमंद माहौल कायम होता है जो बीमारियों से बचाता है। साफ पानी, खाने पीने की अशिया जैसे जिस्मानी तहारत और साफ रास्ते अपनाना सेहतमंद जिंदगी के लिए ज़रूरी है। हिफ्ज़ान सेहत यह सेहत के तहफ्फुज़ के लिए उसूल और अमाल का मजमूआ है जिसमें सेहतमंद माहौल पैदा करने की तमाम अवामी शामिल है। ज़ाती सफाई, सुबह व शाम दांत साफ करना, जिस्म को साफ रखना और रोज़ाना सफाई का ख्याल रखना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। घरेलू और अवामी सफाई, अपने घर को साफ रखना, हवा को ताज़ा रखना, किचन और बर्तनों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक साफ रखना बीमारियों से बचाता है। साथ ही अवामी रास्तों और गुजरगाहों को और अपने मोहल्ले को और अपने शहर को साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। सफाई का ख्याल रखने से हम न सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों और माशरे को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। इससे सेहतमंद जिंदगी बसर करने में मदद मिलती है और सेहत पर होने वाले खर्चात में भी बचत होती है। जदीद दौर में फास्ट फूड का रुझान बढ़ने और खाने पीने के अशिया को ज़ाय करने का फैशन सेहत और सफाई के हवाले से एक नई खराबी पैदा कर रहा है। सेहत और सफाई पर अमल करना एक फ़र्ज की तरह से है जिसे हम सबको मिलकर सेहतमंद और खुशहाल मुस्तकबिल बना सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा है, ये ना सिर्फ एक सरकारी स्कीम है बल्कि शहरियों के तर्ज ज़िंदगी में भी बुनियादी उसूल बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन का फ़लसफ़ा एक रोशन मिसाल है। इसने हमारे शहरों के पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात को तरजीह दी है और शहरी गरीबों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिश की है।
2: सामईन, अभी आप वज़ीर आज़म का प्रोग्राम स्वच्छता ही सेवा है पर ये मुख्तसर तकरीर समाज फरमा रहे थे।
3: अब हम आपको वादी शेर व सुखन की जानिब ले चलते हैं। कलाम शायर के तहत समाज फरमाइए जनाबे जालिब नुमानी से उनका कलाम।
4: बंद पिंजरे में कोई चीज है क्या, बंद पिंजरे में कोई चीज है क्या, रोशनी आँख की कनीज है क्या, रोशनी आँख की कनीज है क्या, साये गुल में जो है ख्वाबीदा, साये गुल में जो है ख्वाबीदा, वो तुम्हारा कोई अजीज है क्या, वो तुम्हारा कोई अजीज है क्या। शेर कर रहा हूँ कि कोई चुपके से क्यों नहीं आता, कोई चुपके से क्यों नहीं आता, सरहदे ख्वाब आज सीज है क्या, सरहदे ख्वाब आज सीज है क्या, कोई मौसम असर नहीं करता, कोई मौसम असर नहीं करता, जिस्म उसका बहुत दबीज है क्या, जिस्म उसका बहुत दबीज है क्या। और ये शेर खास तौर से मुलाजा हो कि छेड़ करती हो खाक सारों से, छेड़ करती हो खाक सारों से, ए हवाओ यही तमीज़ है क्या, ए हवाओ यही तमीज़।

0: चीज है क्या, और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि फूल है चांद है कि अंगारा, फूल है चांद है कि अंगारा, आपके हाथ में प्लीज है क्या, आपके हाथ में प्लीज है क्या, बंद पिंजरे में कोई चीज है क्या, रोशनी आँख की कनीज है क्या। और दूसरी गजल का मतलब पेश है कि मौसम के लब पे रखता है नगमे नए नए, मौसम के लब पे रखता है नगमे नए नए, पहने हुए हैं पेड़ भी कपड़े नए नए, पहने हुए हैं पेड़ भी कपड़े नए नए। और ये शेर मुलाहजा हो कि नज़्मे कोहन बदल गया क्या आसमान का, नज़्मे कोहन बदल गया क्या आसमान का, आने लगे जमी पे फरिश्ते नए नए, आने लगे जमी पे फरिश्ते नए नए, अब पत्थर पे है गुलाब की चादर बिछी हुई, पत्थर पे है गुलाब की चादर बिछी हुई, दिखला रहा है कौन करिश्मे नए नए, दिखला रहा है कौन करिश्मे नए नए। और ये शेर मुलाहजा हो कि अपने लहू की हो गई पहचान गुमशुदा, अपने लहू की हो गई पहचान गुमशुदा, अपने लहू की हो गई पहचान गुमशुदा, बनने लगे हैं शहरों में रिश्ते नए नए, बनने लगे हैं शहरों में रिश्ते नए नए। और ये आखिरी शेर मुलाहजा हो कि जेरे जमीन सोया हुआ है सुकून से, जेरे जमीन सोया हुआ है सुकून से, उठते थे जिसकी जात से फितने नए नए, उठते थे जिसकी जात से फितने नए नए, मौसम के लब पे रखता है नगमे नए नए, पहने हुए हैं पेड़ भी कपड़े नए नए। एक गजल के कुछ शेर मुलाहजा हो, मतलब पेश कर रहा हूं कि आंधी में भी जगह से कभी डोलते नहीं।
1: अभी आप जनाबे जालिब नुमानी से उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। अजीम मुजाहिद आजादी अल्लाह बख्श की यौम वफात के मौके पर पेश खिदमत है ये तकरीर। मौजू है अजीम मुजाहिद आजादी, अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श सूसरों के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान के जंग आज़ादी के अहम रुकन थे। वो मुल्क के तकसीम के सख्त मुखालिफ थे। वो आज़ादी से कबल सिंध स्टेट के दो बार वजीर आला रहे 1938 और 1942 में। हिंदुस्तान के सपोर्ट में जिनमें जाति और मजहब के बिना पर हिंदुस्तान को बंटवारा चाहते थे, ये इसके सख्त मुखालिफ थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम यकजहती से ही भारत को मजबूत बनाया जा सकता है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के भारत के बंटवारे के जवाब में दिल्ली में एक बहुत बड़ी आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें 75,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों के मुखालफत में भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट किया और ब्रिटिश हुकूमत ने जो खान बहादुर का खिताब दिया था उन्हें भी वापस कर दिया, और 14 मई सन 1943 ईस्वी को उन्हें शहीद कर दिया गया। सामईन, अभी आप ये मुख्तसर तकरीर समाअत फरमा रहे थे। मौजू था भारत के अजीम मुजाहिद आज़ादी, अल्लाह बख्श। सामईन, अब हम आपको अफसाने की जानिब ले चलते हैं। डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी से समाअत फरमाई उनका अफसाना थका हुआ यकीन।
2: इस आलिशान वसी और अरीज मकान में प्रभा देवी अपनी मुलाजमा कमली के साथ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अकेली हैं। उनके दो लड़के राजेश और राकेश हिंदुस्तान से बाहर बैरून ममालिक में अपने अपने ख़ानदान के साथ बसिलसिले मुलाजमत अपनी आयली ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। प्रभा देवी को इस मकान में ज़रूरत की हर चीज़ मैसर है, फिर भी वो अपने वजूद में खालीपन का एहसास करती हैं। यही वजह है कि जब वो अपने बंद कमरे में सोती हैं तो अक्सर

की रूह दीवारों को तोड़कर कहीं दूर निकल जाती है और अपनों की तलाश में उनकी दिली ख्वाहिश है कि उनके बेटे बहू पोते पोतियां जो उनसे हजारों मील की दूरी पर हैं, बच्चों से चाहत मोहब्बत और अपनाइयत का फितरी जज्बा उन्हें बेचैन करता है। जब कभी वो तन्हाई से उकता जाती हैं तो मोबाइल फ़ोन से बेटों की खैरियत पूछा करती हैं। अक्सर मोबाइल से गुफ्तगू बहू या पोते से होती है, बेटों से बहुत कम बात हो पाती है। अपनी ही औलाद से फ़ोन पर बात न हो सकने की वजह से उनके दिलो दिमाग पर अफसुर्दगी छा जाती है। जब वो दिमाग के बालाई सतह पर गम के बादल छा जाते हैं तो वो चुपके चुपके आंसुओं की बारिश करके अपना बोझ हल्का कर लेती हैं। माँ जो मोहब्बत का नाम है, ममता जो दिल के हाथों मजबूर है, और ये दिल भी अजीब शय है जो रोशनी में सोता है और तारीकी में जागता है, बातों के शोर में खामोश रहता है और खामोशी के सुकूत में बोलता है। अक्सर प्रभा देवी ख्यालात की दुनिया में खो जाती हैं। गुजरे हुए दिनों की यादें, ख्वाह वो खुशगवार हों या गमगीन, जहन के उफुक पर उभरने लगती हैं। अभी एक साल पहले की बात है जब राजेश के बाबूजी उनके साथ थे। उनकी मौजूदगी उन्हें कभी तन्हाई महसूस नहीं करने देती थी। आज भी उनकी आवाज़ कानों में गूंजती है, कमली ओ कमली, राजेश की माँ को बुलाना। इससे पहले कि बाबूजी की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो जाए, कमली माँ जी ही को आवाज़ देती है। माँ जी, क्या है कमली की बच्ची, एक मिनट भी चैन नहीं लेने देती, अभी अभी तो ज़रा लेटी थी। माँ जी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। प्रभा देवी पति के पास आती हैं और पूछती हैं, क्या है? अभी कुछ ही देर पहले तो आपके पास से गई हूँ। बाबूजी पेट पकड़कर कुछ बेचैनी सी महसूस करते हैं। क्या बात है, बाथरूम जाना है क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो आपको लेकर गई थी, क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है? बाबूजी डरे हुए बच्चे की तरह सर हिलाते हैं, मानो वो कह रहे हों कि प्रभा तुम तो मेरी मजबूरी समझती हो। बाबूजी को हर 15-20 मिनट के बाद पेशाब की हाजत होती है, कभी कभी 1.5-2 घंटे बर्दाश्त कर लेते हैं। डॉक्टर ने उन्हें कोई पेशाब की बीमारी बताया है जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। ताहम बाबूजी इतने नहीफ और कमज़ोर हो चुके हैं कि उन्हें डर है कि कहीं ये ऑपरेशन जानलेवा ना बन जाए। वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है। फिर सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। माँ जी के अलावा सभी लोग बाबूजी को भूल गए। वक्त परिंदे की तरह उड़ता रहा। प्रभा देवी अपने दोनों बेटों का शिद्दत से इंतज़ार करती रहीं और इस बड़े मकान में उन्हें अकेलापन काटने को दौड़ता रहा। वो खुद को बहलाने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं लेकिन नाकाम रहती हैं। कभी कभी इस तन्हाई को बहलाने के लिए पुरानी यादों के चिराग रोशन कर लेती हैं। घर में बैठे बैठे अक्सर गैर ज़रूरी काम किया करती हैं। कभी तस्वीरों की एल्बम कमली से मंगवाती हैं और एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देखा करती हैं। उन्हीं तस्वीरों की मदद से वो गुजरे हुए दिनों को याद करती हैं। दिल ही दिल में सोचती हैं, ये तस्वीरें हमारे बच्चों की पैदाइश के दिन से आज तक की मुख्तलिफ मौक़ों पर मेरे शौहर ने खुद खींची हैं। फ़ोटो खींचना उन्हें बहुत पसंद था, ख़ास तौर से मेरे और बेटों की अचानक तस्वीरें उतार लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ज़िंदगी के तवील अरसे में उन्होंने न जाने कितनी तस्वीरें खींची थीं। प्रभा देवी एक हसास जहन की मालिक हैं। शौहर की जुदाई ने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया है। अगर उनके लड़के और बहू बच्चों के साथ उनके पास रहते तो उनका अकेलापन दूर हो सकता था। वो इस इंतज़ार में फ़िक्रमंद रहती हैं कि मेरे दोनों बेटे अभी तक मुझे लेने के लिए यहाँ क्यों नहीं आए, क्या उन्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? मैंने उन्हें जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है, क्या इन बातों का वो ज़रा भी एहसास नहीं करते? तरह तरह के ख्यालात और वसवसे प्रभा देवी के जहन में उभरते रहते हैं। उन्हें फिर भी यकीन है कि मेरे बेटे भी इस तन्हाई की कैद से आज़ाद कि मेरे बेटे मुझे इस तन्हाई के कैद से आज़ाद कराकर अपने साथ ले जाएंगे। मैं ज़िंदगी के बाकी दिन उनके सहारे गुजार दूंगी और अपने पोते पोतियों का साथ पाकर सारे गम भूल जाऊंगी। राजेश और राकेश अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ हैं कि उन्हें माँ की ज़रूरत का एहसास ही नहीं होता, या यूँ कहा जाए कि उन्हें माँ की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। फ़ोन पर वो माँ को तसल्ली देते हैं, उन्हें अपनी मसरूफियत का यकीन

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी। खेती किसानी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बातचीत फसल उत्पादन में एकीकृत पोषक तत्व संबंध में। डॉक्टर हनुमान सिंह से की गई बातचीत, आपसे बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।
5: देश का जौन जनसंख्या बढ़त जात बा, ओकरे खातिर खेत का जोत बढ़ावल ना जा सकेला, कृषि उत्पादन क्षेत्र के ना बढ़ावल जा सकेला, लेकिन अच्छा बीया और अच्छा खाद और उर्वरक प्रबंध करके उत्पादन के बढ़ावल जा सकेला। लेकिन हर चीज का कोनो सीमा होला, समुचित जानकारी नाई बा, एकरे खातिर किसान भाई का खेती में लागत बढ़त बा, उत्पादन लागत के तुलना में नाई होत बा। यही से सब कहत बा कि खेती बा तवन नुकसान का काम बा, लेकिन हम यह बात से सहमत नाई बानी। अगर सही जानकारी मिले तो खेती का जौन उत्पादन लागत बा ओके कम कइल जा सकेला, उत्पादन बढ़ावल जा सकेला, नगद आमदनी भी बढ़ावल जा सकेला, आय के स्रोत के विकसित कइल जा सकेला। आज हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर हनुमान सिंह। डॉक्टर साहब, आप कहाँ का रहे वाला हैं और आपका परिचय कहाँ है?
6: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर हनुमान सिंह, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण विभाग के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक प्रक्षेत्र अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ।
5: डॉक्टर साहब, फसल उत्पादन में एकीकृत खाद और उर्वरक का समुचित प्रबंधन में आप लोगों का क्या राय है, क्योंकि आप माटी से जुड़ल हैं और मृदा के बारे में आपका गहन अध्ययन बा।
6: जैसा कि आप बात

करें, फसल उत्पादन में पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकी का प्रयोग क्यों करते हैं? सभी किसान भाइयों की अपेक्षा होती है कि उनकी जोत के संपूर्ण क्षेत्रफल में अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो, लेकिन प्रारंभ में जब रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं थे, खेती में जैविक खाद का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था, जिससे कृषि उत्पादन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाता था। परंतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। प्रारंभ में प्रमुख पोषक तत्वों में केवल नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग हुआ, लेकिन धीरे धीरे फास्फेटिक उर्वरकों के महत्व को समझते हुए इनका प्रयोग भी होने लगा। परंतु अन्य उर्वरकों, आवश्यक पोषक तत्वों जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर इत्यादि का मिट्टी में कमी होने लगी। फलस्वरूप इन पोषक तत्वों को आवश्यकता अनुसार उपलब्धता न होने से अधिकांश क्षेत्रों में उत्पादन में ठहराव आ गया तथा उत्पादन में कमी भी देखी गई। मृदा के जीवांश में लगातार हो रहे ह्रास से मृदा में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ कि बढ़ती हुई आबादी के सापेक्ष खाद्यान्न उत्पादन पर प्रश्न चिन्ह लग गया। हाल के शोध में पाया गया कि गोबर की खाद, हरी खाद या गेहूं के भूसे द्वारा कुल पोषक तत्वों के 50 से 75% आपूर्ति से फसल उत्पादन की उपज में वृद्धि होती है तथा उर्वरता भी मिट्टी की बनी रहती है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का प्रयोग खेती बाड़ी में किया जाने लगा। यह एक ऐसी विधि है जिसमें कार्बनिक खाद और अकार्बनिक उर्वरकों के मिश्रण द्वारा पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरक उपयोग क्षमता को अधिक करना तथा मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को बढ़ाने इत्यादि से संबंधित है, ताकि लंबे समय तक अस्थायी कृषि द्वारा अधिक उत्पादन लिया जा सके। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन

0: एकर प्रयोग भी फसल के करे के पड़ेला। कर समुचित प्रबंधन के बारे में आप लोग का सुझाव देना।
1: एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के अवयव हैं ये सब आप बता रहे हैं, इसमें जैसे रासायनिक खाद हो गई, इसमें रासायनिक खाद के रूप में आप यूरिया देते हो, डाई देते हो, म्यूरेटा पोटास, तो इस तरह से रासायनिक उर्वरक हो गए। जैविक खाद भी इसका एक कंपोनेंट है, तो उसके अंतर्गत कंपोस्ट आती है, केचुए की खाद आती है, हरी खाद आती है, और जानवरों के न खाने योग्य खली बिजोली भी ऐसी आती है, अजोला आता है, जीवाणु खाद भी है इसका एक अवयव, जिसमें राइजोबियम आता है जिसे दलहनी फसल में यूज करते हो आप, नील हरित शैवाल होती है, एजोसोफाइलम होता है, एजोटोबैक्टर होता है इत्यादि। और अगला इसका अवयव है कृषि आधारित उद्योगों के अवशिष्ट और गन्ने और कागज से निकला, कागज मिल से निकला हुआ अवशिष्ट। पांचवा इसका अवयव है खनन एवं औद्योगिक अवशिष्ट, जैसे चूना का पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया इत्यादि। इन ये सब कंपोनेंट मिला करके इस तरह से समुचित प्रयोग मृदा में करते हैं कि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।
0: कार्बनिक खाद दिहला से रासायनिक उर्वरक के कार्य क्षमता कैसे बढ़ावल जा सकेला, एकर असर का होला?
1: जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम रासायनिक खाद देते हैं तो फसल का जो नाइट्रोजन होता है वो पौधे को 30-50% तक पौधे ले पाते हैं, बाकी वो किसी न किसी रूप से नष्ट हो जाता है। और फास्फोरिक फर्टिलाइजर जब देते हैं तो 15-25% तक पौधे को अवेलेबल होता है, बाकी वह उसी अवस्था में मिट्टी में पड़ा रहता है सर, अघुलनशील अवस्था में पड़ा रहता है। और जो पोटेशियम फर्टिलाइजर होता है पौधों को 30-50% तक अवेलेबल होता है सर, बाकी वो ऐसे ही मिट्टी में वो भी पड़ा रहता है। जब कार्बनिक खाद आप देते हो उसके साथ मिला करके तो वो इस तरह से मिट्टी में जाता है, तो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, जब कार्बनिक एसिड रिलीज करते हैं वो कार्बनिक एसिड जो अम्ल होते हैं कार्बनिक अम्ल, वो उसको घुलनशील अवस्था में बना करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं सर। इसका रोल यही है सर, मतलब जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व भंडारण की क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं सर।
0: काला का मतलब कि अब हमने के भ्रम दूर हो जाए के चाहिए कि खाली रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके माटी के भी सुधारल जा सकेला, अधिक उत्पादन भी लिहल जा सकेला, कीटनाशक का प्रयोग भी ना करे पड़ी। ये विचार अब हमने का धीरे धीरे गलत साबित होता, बगैर कार्बनिक खाद के उत्पादन एकदम स्थिर हो जाये और खेती बात और हमेशा घाटे का सौदा रही। जरूरत यह बात कबा कि खाद उर्वरक का मिला जुला प्रयोग कई जा ताकि कम से कम रासायनिक खाद खेत में डाले के पड़े। एक बात बताएं कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये जो तीन प्रमुख पोषक तत्व बा, केहूबा सैगर यूरिया खेत में डाल दे, केहूबा टे की बुआई करते समय यूरिया डाल दे, आप पूरा फसल के जीवन चक्र में न तो मैं फास्फोरस डाली न तो पोटास डाली, एकर दुष्परिणाम का होला माटी पर और फसल पर?
1: जैसे आप यूज करते हैं असंतुलित पोषक तत्वों की मात्रा अगर आप यूज करते हैं तो जो संतुलित मात्रा होती है पौधों को मिल ही नहीं पाती, मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य गिरने लगता है, पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व नहीं चाहिए उससे उसकी पैदावार घटने लगती है। तो इस तरह से इसका मिला जुला मतलब बराबर मात्रा में जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही पौधों को देना चाहिए।
0: जैविक खाद में खासतौर से एजोला, यही तरह से राइजोबियम कल्चर या अन्य जोन प्रयोगशाला से बनेला जीवाणु खाद के रूप में माटी में स्थिर रासायनिक उर्वरक के अवशोषण करे में कैसे मदद करे?
1: जैसे सर आप जब जैविक उर्वरक मिट्टी में प्रयोग करते हो आप, तो जैसे राइजोबियम कल्चर हो गया सर, ये क्या करता है, ये दो तरह का होता है। एक वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस फ्री रूप में घूम रही है सर, उसको पौधे लेने में असमर्थ होते हैं सर। ये राइजोबियम कल्चर क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के पौधों की जड़ों में जो दलहनी फसलें मुख्य रूप से उनकी जड़ों में एकत्रित करता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है। अब जैसे आप फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है उसका मुख्य काम क्या होता है कि जब आप खेत में रासायनिक उर्वरक के थ्रू फास्फोरस अप्लाई करवाते हो देते हो तो वो 15-25% ही अवेलेबल होता है, बाकी वो ऐसे ही अघुलनशील अवस्था में पड़ा रहता है। तो जो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है उस फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को घुलनशील रूप में बना करके पौधों को प्रोवाइड करवाता है। एजोला है ये भी वातावरण की जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके अपने अंदर पौधों को ये भी उपलब्ध करवाता रहता है। जो जैविक उर्वरक है ये भी किसी न किसी रूप में मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जो आवश्यक है उनको प्रदान करवाते रहते हैं, बड़े मददगार साबित होते हैं मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने में।
0: बड़ा चर्चा होला माटी में कार्बन के मात्रा के बढ़ावला का, दूसरा तरफ ये होला कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता और माटी में घटत बा, एकरे खातिर आप लोग का सुझाव देना कि माटी में कार्बन का मात्रा बढ़े वायुमंडल में घटे?
1: जैसे कि मिट्टी में

0: बोलते हैं कि जीवाश्म तत्व की मात्रा कम हो रही है दिन पे दिन। मिट्टी अपने अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को संरक्षित रखती है, उनका मुख्य भोजन वही कार्बनिक तत्व होता है, वही लाभदायक सूक्ष्म तत्व ही मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं, और सूक्ष्म तत्वों का भोजन ही वो जीवाश्म तत्व है। उसको बनाए रखने के लिए समय समय पर हर साल जैसे किसान भाई क्या करे, उसमें जो कार्बनिक खादें हैं उनको अप्लाई करें, उसको मिट्टी मतलब मिलाएं, जैसे कंपोस्ट हो गया, केंचुए की खाद हो गई, हरी खाद हो गई, फसलों के अवशिष्ट हो गए, इन सबों को मिट्टी में हर साल किसी न किसी रूप में देते रहे, जिससे इसका असर मिट्टी में बना रहे।
1: डॉक्टर हनुमंत सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी दिली कि फसल उत्पादन में एकीकृत उर्वरक प्रबंधन कैसे कइल जा, एकर जरूरत का बा, आका समुचित प्रयोग करे के चाही, का विधि होके के चाही, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप खेती किसानी कार्यक्रम में बातचीत सुन रहे थे फसल उत्पादन में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध विषय पर, डॉक्टर हनुमंत सिंह से की गई बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next phase of India-Africa collaboration will focus on higher value products and integrated supply chains across sectors such as agriculture, digital infrastructure, healthcare, clean energy, manufacturing and technology. Mr. Goyal was addressing the curtain raiser for the India-Africa Business Dialogue and Exhibition and the India-Africa Forum Summit in New Delhi yesterday. He also expressed confidence that the India-Africa, alongside the 4th India-Africa Forum Summit, will be a success. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home Minister Amit Shah today said India has emerged as a global leader and first responder in the field of disaster management. Mr. Shah said the country has provided global leadership in the field of disaster resilient infrastructure. He highlighted that 48 countries are now members of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI, and are working together with India in this direction. Mr. Shah was addressing the gathering after presenting the prestigious President's Colour Award to the National Disaster Response Force, NDRF, at their 8th Battalion campus in Ghaziabad. He said for any force, receiving the President's Colour's honour is a matter of immense pride.
1: The conferment of President's honor upon National Disaster Response Forces is a matter of pride and prestigious for all of us. This recognition honors the collective values of service, courage, valor and dedication displayed by the entire force. Within a short span of less than 20 years, National Disaster Management Authority and NDRF has played a significant role in placing India on the global map in the field of disaster response and rescue operations.
0: Minister of State for Defence Sanjay Seth today described Operation Sindoor as a landmark success that demonstrated India's capability to conduct swift, coordinated operations using indigenous weapons and systems. The minister was addressing the inaugural session of the third edition of Kalam and Kavach in New Delhi.
2: Today's world is changing rapidly. The nature of warfare is evolving. Threats are no longer confined to physical borders. They now extend into cyberspace, space, information network, and emerging technologies. In such environment, security demands not only preparedness, but also foresight. That is why the idea of JAI, given by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji during the latest Commander Conference, jointness, Atmanirbharta, innovation is so important for India's future.
0: The event serves as a premier strategic platform bringing together senior policy makers, military leadership and defence industry stakeholders to deliberate on India's evolving defence transformation and indigenous capability development. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheesan as the new Chief Minister of Kerala. The announcement was made by Congress leaders Ajay Makan, Mukul Wasnik and Deepa Das Munshi during a press conference in New Delhi. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. UDF secured a more than two-thirds majority in the Kerala Assembly elections, but the party was unable to decide its chief ministerial face due to lobbying by different camps and protests by workers at the ground level. The BJP today hit out at the Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, over his foreign visits. Briefing media in New Delhi, BJP spokesperson Sambit Patra said, Mr. Gandhi is in public life for the last 22 years and during the period he has undertaken 54 visits. Mr. Patra alleged that the estimated amount of 60 crore rupees was spent by him personally on his foreign visits. The Tripura government has introduced a series of austerity measures to reduce expenditure and conserve fuel. In a memorandum issued yesterday, the state government directed all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the U.S. to be partners, not rivals. In his opening remarks, U.S. President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The U.S. President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की इसमें ईरान संघर्ष वैश्विक ऊर्जा संकट शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन नवाचार सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है
4: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
3: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
4: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
3: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
0: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
6: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
5: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास श्रम कल्याण और चाय बागान जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के

0: तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और

0: चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: पुनः स्वागत, अभिवादन संपूर्ण श्रोताओं।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप नेपाली कार्यक्रम सुनेंगे।

0: आपके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अब रहल समाचार। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरल को नया मुख्यमंत्री हुने छन्। कांग्रेसले आज नयाँ दिल्लीमा एक संवाददाता सम्मेलनको अवधि उहाँको नामको घोषणा गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अनि चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले आज चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभयो।
3: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनपिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनपिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: भारतीय जनता पार्टीले लोकसभामा विपक्षका नेता राहुल गान्धीको विदेश यात्रालाई लिएर प्रश्न उठाएको छ। नयाँ दिल्लीमा आज संवाददाताहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भाजपा प्रवक्ता संबित पात्राले भन्नुभयो, श्री गान्धी पछिल्लो 22 वर्षको सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ अनि यस अवधि उहाँले 54 यात्रा गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआरको तेस्रो चरणको घोषणा गरेको छ। यसमा 16 राज्य अनि 3 केन्द्र शासित प्रदेशमा चरणबद्ध ढंगमा चलाइनेछ। यी राज्यहरू आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागाल्याण्ड, ओडिसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना र उत्तराखण्ड रहेका छन्। केन्द्र शासित प्रदेशमा दिल्ली, चण्डीगढ़, दादरा अनि नगर हवेली तथा दमन अनि द्वीप सामेल छन्। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठीले विशाखापट्टनममा पूर्वी नौसेना कमाण्डको भ्रमण गर्नुभयो। उहाँले नौसेनाको सञ्चालन, प्रशिक्षण र प्रशासनिक गतिविधिहरूको समीक्षा गर्नुभयो। नौसेना प्रमुखले बंगालको खाड़ीमा पूर्वी फ्लीटको तयारीको पनि जायजा लिनुभयो। उहाँले युद्धपोत, पनडुब्बी र समुद्री विमानहरूको साथ गरिएको उन्नत युद्ध अभ्यासहरूको अवलोकन गर्नुभयो। प्रवर्तन निदेशालयले विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम फेमाको प्रावधानहरू अन्तर्गत जायग्रेड टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड अनि अन्यसित सम्बन्धित जाँचको मामलामा 14 व्यक्तिहरू अनि कम्पनीहरूको परिसरमा छापेमारी गरेको छ। एक बयानमा निर्देशालयले भनेको छ कि जायग्रेड टेक्नोलोजिस कम्पनीले अनलाइन गेमिङ गतिविधिहरूको लागि भुक्तान एग्रिगेटरहरूको माध्यमद्वारा मानिसहरूबाट पैसा संग्रह गरिरहेको थियो। निर्देशालयले बताएअनुसार संग्रह गरिएको पैसा कथित रूपमा ह्याप्पी, इजीगो सहित विभिन्न कम्पनीहरूको माध्यमद्वारा अनि पछि वालेट रिचार्ज तथा एयरलाइन सम्बन्धी लेनदेनद्वारा विदेशहरूमा पुर्याउने गरिन्थ्यो, जो फेमा अधिनियमको प्रावधानहरूको उल्लङ्घन हो। रक्षा राज्यमन्त्री संजय सेठले अपरेशन सिन्दूर भारतको ऐतिहासिक सफलताको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको बताउनु भएको छ, जसमा त्वरित अनि समन्वित कार्यवाही तथा स्वदेशी हतियारहरू अनि प्रणालीहरूको उपयोग गरियो। नयाँ दिल्लीमा कलम और कवचको तेस्रो संस्करणको उद्घाटन सत्रमा श्री सेठले भन्नुभयो, आधुनिक भारत नयाँ चुनौतीहरूको समयमा वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूलाई सैन्य शक्तिसित जोडिरहेको छ। सरकारले उखु, सेतो चिनी र प्रशोधित चिनीको निर्यातमा सेप्टेम्बर 2026 वा अर्को आदेशसम्म तत्काल प्रभावसहित प्रतिबन्ध लगाएको छ। वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले जारी गरेको अधिसूचीमा निर्यात नीतिमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। अमेरिकाको सीएक्सएल र टीआरक्यू कोटा अग्रिम प्राधिकरण योजना र अन्य देशहरूको खाद्य सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्न युरोपीय संघ र अमेरिकामा निर्यात गरिने चिनीमा यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन। भारतीय सेना अनि नौसेनाले आज अन्तर सेवा सहयोगलाई बलियो बनाउने अनि अधिक संयुक्त तालाई बढ़ावा दिन सम्बन्धता ज्ञापनमाथि हस्ताक्षर गरेको छ। भारतीय सेनाको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल वीपीएस कौशिक, एडजुटेन्ट जनरल अनि भारतीय नौसेनाको तर्फबाट वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह चीफ अफ पर्सनल ले यसमा हस्ताक्षर गरे। रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ कि यस सम्झौता ज्ञापन

0: भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा, इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत की आजादी के लिए लड़े, उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए, और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल, और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन के तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं, बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा,
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह. तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी. इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था. सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली. एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग. तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का. लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे. लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है.
0: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने.
1: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी. सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में. सो लाइफ तो सेट थी. एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम. एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है. बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम. सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की. उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, एसएसबी देने के लिए. और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड. और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ एसएसबी. वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा.
0: अमेजिंग. और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें.
1: जी बिल्कुल.
0: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना. तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की. इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है.

0: क्या दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल, ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफ़ी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज़ जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है। थॉट्स लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज़ लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नज़रों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज़ बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है। बिल्कुल, आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स। आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है। सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
0: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है, आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए.
1: जी
0: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं. तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
1: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं.
0: जी
1: एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो
0: बिल्कुल
1: उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन्ड है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पॉर्टेंस होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज़ अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है.
1: जी
0: तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है? मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फख्र से सब आपका नाम लेते हैं?
1: जी लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज़ है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
0: दैट्स अमेजिंग. इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरे ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफ़ी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी, वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड।
1: रिपब्लिक डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ।
0: हाँ
1: और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो, जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है।
0: हाँ
1: वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो
0: ओ
1: आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है।
0: पूरे 14 किलोमीटर तक।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले, और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर, जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी,
0: जी
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि
0: सपना।
1: उस राजपथ पे मैं चलूँ। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज़ पे जाना चाहूँगी जहाँ मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
0: हाँ

0: क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ। और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे कहते हैं, कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है। लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ।
1: ओह माय गॉड।
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो, आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम, एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
0: जी।
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
1: जी।
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है, और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो।
1: हाँ,
0: लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उभर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वो एक्चुअल लाइफ है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजन्स हैं। कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने मतलब मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी।
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है, केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सकें। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूँगी फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में ज़रूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपकी इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहाँ मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको

0: अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपकी लाइफ में, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है,

0: सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
1: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
0: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
1: पहली बात होगी, किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज़, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
0: जी
1: और किसी भी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। किसी भी चीज़ से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
0: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
0: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
1: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद, जय हिंद।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मेट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए रखने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर तथा एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए उनका कार्यक्रम युववाणी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज यादव। दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं एक सुविचार से, जो गलती करके स्वीकार नहीं करते उनसे सुधरने की उम्मीद ही व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे या आपके किसी दोस्त से कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वीकारने से उसे सुधारने का मौका मिलेगा और वह गलती दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएगी। दोस्तों इस सुविचार पर आप जरूर ध्यान दें और इस सुविचार के बाद लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

0: युवा साथियों, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं एक वार्ता। विषय है संतुलित आहार हमारे जीवन का आधार, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं वार्ताकार श्री आनंद उपाध्याय।
1: भोजन दैनिक जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता है। जो हम खाते हैं वह न केवल हमारे वजन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और जीवन की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। संतुलित और आहार से संबंधित अनुशासन शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और अर्थात बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी कि पोषण से भरपूर भोजन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं, संक्रमण से बचाव होता है। पोषण मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। अच्छा भोजन तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है, जिससे मनोदशा में सुधार होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भोजन और आहार क्या है, उसके बाद शरीर और स्वास्थ्य को समझते हुए भोजन के प्रभाव को समझेंगे, अर्थात भोजन शरीर को कैसे प्रभावित करता है। आमतौर पर भोजन शब्द ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे भूख मिटाने के लिए खाया जाता है, जबकि वैज्ञानिक रूप से भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिससे भूख मिटाने के साथ ही साथ शरीर का पोषण भी हो, अर्थात शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हों। इन्हीं पोषक तत्व को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा व तेल, विटामिन्स, आहारी खनिज, रेशा एवं जल के रूप में जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में इन्हीं पोषक तत्वों को आहार भोजन के घटक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं घटकों से मिलकर जीवों और समस्त मानव के शरीर का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक आधार पर भी कह सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और नीर अर्थात जल, विटामिन्स संग खनिज लवण मिलकर ये शरीर बनता है। विटामिन्स की उपयोगिता हमारे शरीर में अत्यधिक बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का निर्माण 5 तत्वों से ही मिलकर हुआ है। मनुष्य अत्यधिक अनुकूलनीय सर्वहारी है। मनुष्य अपने अनुकूलता के आधार पर ही आहार को ग्रहण करता है। विभिन्न परिस्थितियों में भोजन प्राप्त करने के लिए खुद को अनुकूलित भी कर लिया है मानव ने। जैसे जैसे मानव ने तकनीक का विकास किया है, वैसे वैसे उपलब्ध कृषि अवसरों के अनुरूप भोजन शैली का विकास किया है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण अनेक प्रकार के व्यंजन और पाक कलाओं का विकास हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां, मसाले एवं जड़ी बूटियां शामिल हैं। बढ़ते व्यापार के कारण संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिश्रण से भोजन एवं खानपान की परंपराओं तथा प्रथाओं में हुए बदलाव से भोजन एवं भोजन करने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। इस बदलाव ने मानव शरीर एवं मानसिक तथा सामाजिक आदि क्षेत्रों को प्रभावित किया है तथा कर रहा है। इस बदलाव को हम सभी लोग अपने परिवेश में या होने वाले समारोह में देख सकते हैं। व्यस्त जिंदगी में व्यक्ति ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों एवं जंक फूड को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। जो खाद्य वस्तुएं विभिन्न प्रकार से डिब्बा या पॉलीथीन में मशीनों के द्वारा बंद की जाती हैं, उन्हें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कहा जाता है। जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अपनी जीवन शैली बना लेने वाले व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तली भुनी चीज़ें अधिक खाता है या फिर जंक फूड का अधिक सेवन करता है, उसके शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम क्लोराइड्स इत्यादि पोषक तत्वों की अधिकता होने लगती है, जबकि विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। सोडियम और हानिकारक वसी अम्ल, विशेषकर संतृप्त वसा जिसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और ट्रांस फैट स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह हृदय के लिए हानिकारक होता है क्योंकि ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है, अथवा दिल के दौरे और धमनियों में रुकावट होने लगती है। मधुमेह और मोटापा भी बढ़ सकता है। यह खून के थक्के, जमने तथा सूजन का कारण भी बन सकते हैं। बच्चे, किशोर, किशोरियों या फिर युवा गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, पालक, बथुआ, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। उनका शरीर विभिन्न विटामिन्स और आहारीय खनिज तत्वों की कमी से रोगी हो जाता है। जैसे विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। विटामिन ए और सी, ई की कमी जब शरीर में होगी तब आँखों की रोशनी कम हो सकती है या आँखों में जलन, सूखापन आदि इत्यादि हो सकता है। कह सकते हैं कि आँखें खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार विटामिन बी टू की कमी से होठ फटने लगते हैं। यदि शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो पायरिया रोग हो सकता है, जबकि विटामिन सी का स्रोत आंवला, नींबू आदि खट्टे फल होते हैं। यदि विटामिन सी मुख्य रूप से ज्यादा कम होता है तब मसूड़े भी कमजोर हो जाते हैं और खून भी आने लगता है। इसी प्रकार से जो बच्चे लगातार एसी में बैठे रहते हैं और धूप में कम निकलते हैं, उन बच्चों के शरीर में या व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, अर्थात बच्चे हों या व्यक्ति या कोई अन्य, सभी लोगों को कम से कम धूप में सुबह में निकलना चाहिए। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी मांसपेशियों में ऐंठन और अनावश्यक थकान होने लगती है। चलने में लड़खड़ाहट और गिरने का खतरा बना रहता है। पालक, बथुआ, चौलाई, सरसों का साग आदि हरी पत्तेदार सब्जियों को न खाने वाले व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी नाइन, फॉलिक जिसे फॉलिक अम्ल कहते हैं, और आयरन जिसे लौह तत्व कहते हैं, या आयोडीन आदि पोषणीय या आहारीय खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। इन खनिज तत्वों की कमी से शरीर में सर्वप्रथम खून की कमी होती है, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। व्यक्ति के शरीर में लौह तत्व या आयरन, कॉपर एवं फॉलिक अम्ल की कमी से मुख्य रूप से खून की कमी हो जाती है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होगी तब व्यक्ति को थायराइड हार्मोन्स कम बनने लगता है। थायराइड हार्मोन की कमी से गलघंट रोग हो जाता है। शरीर का वजन बढ़ने लगता है और थकावट महसूस होती है। बालों का झड़ना और मानसिक सुस्ती भी हो सकती है। बच्चों में आयोडीन की कमी से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। स्त्रियों में अनियमित

0: मासिक धर्म हो सकता है। कभी कभी गर्भधारण की समस्या भी हो सकती है। बच्चों में कुपोषण के कारण प्रोटीन्स, यदि बच्चों को प्रोटीन्स और खाने का आहार जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या कहेंगे दाल चावल रोटी भी कम मिलती है, तब ऐसे बच्चों को मैरस्मस रोग या क्वाशरकोर रोग हो सकता है। क्वाशरकोर रोग में बच्चों का पेट बाहर निकलता है, चेहरा और पैर सूजन या कहेंगे चेहरा और पैर में सूजन आ सकती है। मैरस्मस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं क्योंकि इस रोग में बच्चों को ना ही प्रोटीन मिलती है ना ही भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इस कारण शरीर बेहद कमजोर हो जाता है और सिर्फ दूर से देखने पर हड्डियों का ढांचा नजर आता है। इस रोग का मुख्य आधार कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की अत्यधिक कमी हो जाती है। जब व्यक्ति के आहार में मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक, तांबा एवं विटामिन डी या विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, तब शरीर में इंसुलिन के उत्पादन में भी कमी आ जाती है। बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ जैसे सॉस, केचप, जैम, जेली, अचार, डिब्बेबंद फल व फलों का रस एवं दुग्ध उत्पादों, पनीर या नमी वाले इत्यादि पदार्थ जो डिब्बे में बंद होकर के आते हैं, उनमें सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट को मुख्य रूप से मिलाया जाता है। बाजार में जो बच्चे भुजिया ज़्यादा खाते हैं बाजार से लेकर के, उनमें और जो भी नमकीन आती है उसमें भी टेरिटरी ब्यूटाइल्स हाइड्रोक्यूनोन्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे भुजिया सुरक्षित रह सके। इसके अलावा ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टॉयल्यून्स रसायन भी मिलाया जाता है। इन रसायनों की वजह से भुजिया हो या डिब्बा बंद पदार्थ हो, उनकी सुगंध, रंग और स्वाद अपने मूल रूप में महसूस होते हैं और इस प्रकार बार बार जो पदार्थों को खाता है, चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या कोई और भी हो, तो शरीर में एक नियमित मात्रा से अधिक ये रसायन पहुंचने लगते हैं, तब इस स्थिति में ये शरीर के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। असुरक्षित भंडारण और अधिक रसायन की वजह से कैंसर जैसे रोग भी घातक हो जाते हैं। घरों में असुरक्षित भंडारण, चाहे वो घर की रसोई हो या बाजार में विक्रेताओं का स्टोर या फिर ठेले पर बिकने वाली खाद्य सामग्री पर स्वच्छता का ध्यान न देने पर भी भोजन और पानी बैक्टीरिया या फफूंदी से दूषित हो सकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार जिसे डायरिया कहा जाता है, पेचिस आदि घातक रोग हो सकते हैं। जो व्यक्ति मांस या दूषित सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उन सब्जियों में परजीवियों के लार्वा भी हो सकते हैं जो पेट में पहुंचकर शरीर को रोगी बना सकते हैं या शरीर में गंभीर घातक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। जैसे यदि शरीर में एस्केरिस के लार्वा पहुंचेंगे तो एस्केरिसिस रोग हो सकता है, अथवा फाइलेरिया के लार्वा होंगे तो फाइलेरियास हो सकता है, जिसे सामान्य भाषा में हाथी पांव रोग कहा जाता है। इसी प्रकार से डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जब कई दिनों तक फ्रिज के अंदर बने रहते हैं तो बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। फ्रिज में गलत तरीके से खाना रखने या गंदे फ्रिज के कारण फूड पॉइजनिंग जैसे सर्दी, खांसी या फिर अपच या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें साल्मोनेला बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और यह बैक्टीरिया गंदे फ्रिज के ड्रॉवर में पनपते हैं जो भोजन को दूषित या संक्रमित करता है। खराब तरीके से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ या संरक्षित या सड़े हुए खाद्य पदार्थ खाने से क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म बैक्टीरिया से बॉटुलिज्म बीमारी हो सकती है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से वातावरण में रहता है जहां वायु या हवा ना हो, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि फ्रिज में अधिक दिनों से बंद डिब्बों वाले भोजन को उबालकर ही खाना चाहिए। भोजन करने से पहले भोजन को जानें, अर्थात सावधानी पूर्वक भोजन तैयार करें और भंडारण कक्ष फ्रिज की समय समय पर सफाई करते रहें। अपने भोजन में दाल वाली फलियां, पत्तेदार हरी सब्जियां और सलाद को अवश्य शामिल करें और मौसमी फल अवश्य सेवन करें।
1: इस वार्ता के बाद दोस्तों आप सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब हम बातें करेंगे करियर की। करियर की बातों में आज हमने जो विषय लिया है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आप जानते हैं AI आज हमारे फोन से लेकर कारों तक हर जगह है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले AI होता क्या है। AI कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बनाता है जो इंसानों जैसा सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके। उदाहरण के लिए स्मार्ट असिस्टेंट जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट AI पर ही चलते हैं। भारत में AI का बाजार 2025 तक $7 अरब हो चुका है और 2030

0: 50 अरब तक पहुंच जाएगा। एआई में करियर के लिए 10वीं 12वीं में साइंस स्ट्रीम चुनें, खासकर मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ग्रेजुएशन में आप बीटेक कर सकते हैं, एआई डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस करें, जो भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी उपलब्ध हैं। इस कोर्स के करने के बाद आपके ढेरों जॉब ऑप्शंस हैं। अब एआई इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स जो रोबोट डिज़ाइन करते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो डेटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, एनएलपी स्पेशलिस्ट जो चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट बनाते हैं। इस क्षेत्र में ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो आप करके सर्टिफाइड एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं। भारत में ढेर सारी कंपनियां हैं जो एआई के प्रोफेशनल को हायर करती हैं। आप चाहें तो इस क्षेत्र में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। एआई तेजी से बदल रहा है तो लगातार सीखना पड़ेगा। एथिक्स का ध्यान रखें, अवसर अनगिनत है। स्टार्टअप्स में ज्वाइन करें या अपना एआई बिजनेस शुरू करें। तो श्रोताओं, एआई में करियर चुने और दुनिया बदले।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम घर आंगन बस कुछ ही पलों में।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सब श्रोता बहन के सुषमा के नमस्ते। और बहन रागनी तू काहे पिछुआ गए लो?
4: देखो बहन जा, हम जा अपने बैठकी में कोनो ना कोनो जो है चर्चा जरूर करीला और कहल जाला घर आंगन कार्यक्रम मिशन है जेमे कुछ ना कुछ ऐसा हम जा अपने स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चन से संबंधित कुछ ना कुछ हम जा जानकारी
3: दहल जाला। और बहन सब के छोट छोट लेकिन मोट बातें के हमन के याद दियावल करेनी। देखो बहन, जौन लड़के होला ना वो कोनो भी देश का भविष्य होला। अगर लड़के स्वस्थ रही हैं तब वह देश के समुचित विकास हुई। ये बात के देश के जौन सरकार बा वो पुरहर तरीके से जाने ले और स्वस्थ लड़का तब वह पैदा हुई जब ओकर जौन माता रही वो पूरी तरीके से स्वस्थ रही। यही बात के ध्यान में रखते हुए सरकार जौन बारा एकीकृत बाल विकास सेवाओं के शुरू कैले रहल 2 अक्टूबर 1975 में, जेकरे अंतर्गत जौन बा 6 वर्ष से छोट लड़कन के पोषण के ध्यान दहल गई, गर्भवती महिलाओं के साथे साथे जौन स्तन पान करे वाली महिला वाटी उनके पोषण का पूरा पूरा ध्यान दहल गई आंगनबाड़ी के माध्यम से। और ये योजना के जौन मुख्य उद्देश्य बाना उ लैकन में कुपोषण के कम कैल, साथे साथे जौन अपन गर्भवती महिला बाटी और जौन स्तन पान कराओ थी उनके अंदर भी कुपोषण के कम कैला बा। साथे साथे ये योजना के तहत जौन बा लैकन के स्कूली पूर्व के जौन शिक्षा जौन होला ना प्राथमिक शिक्षा जे के कहल जाला ओके खेल खेल के माध्यम से सिखावल जाला। साथे साथे अपने महिला लोगन के जौन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होला ओके दहल जाला। साथे साथे एक कार्यक्रम के माध्यम से अपने जौन स्कूल में पढ़े वाले लड़के बाटे उनके उपस्थिति के बढ़ावे खातिर ये योजना के चलावल गेल हल और एकर जौन सारा कार्यभार बाऊ आंगनवाड़ी के तहत जौन बा संचालित होला।
4: कहले के मतलब ये बा कि जौन लड़का 3 से 6 वर्ष का हवा उनकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा जौन हवा तन ओमे दिहल जाला, ओमे तरह तरह के जौन सरकार है खिलौना देती है ताकि लड़का खेल के माध्यम से स्कूल गेले से पहले जौन तैयारी हला ओकर तैयारी कर सकें और साथ साथ एमे जौन है समय समय पर जौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं आशा बहु हैं वो लोगन के ये रहला कि नियमित टीकाकरण जौन है लड़कन का होत रह एकर भी जरूर विशेष ध्यान दिहल जाला। तो बहन सभी अपने बैठकी में और भी चर्चा करे के लेकिन यही से संबंधित सुनल जाएगो वार्ता बाल पोषाहार जे पर जानकारी देते हैं डॉक्टर अनामिका शर्मा।
5: जरूरत तब से परेला जब वो अपना महतारी के गर्भ में पलल शुरू होला। गर्भे से बच्चा अपना महतारी से पोषक तत्व ग्रहण कैके तंदुरुस्त होला। जवन महतारी गर्भावस्था में अपना खान पान पर ध्यान नहीं देली तो वो बच्चा गर्भे से कुपोषण के शिकार होके लागेला। पोषित आहार के सबसे ढेर जरूरत बच्चा लोग के परेला, काहे कि इस समय बच्चा बदे शारीरिक बढ़ोतरी और मानसिक विकास का होला। इस समय विकास बदे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन और वसा के विशेष रूप से जरूरत होला। लड़कन खातिर जौने आहार में विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के संतुलित मात्रा रहेला ओही के बाल पोषाहार कहल जाला। चिकित्सकीय पद्धति के हिसाब से महिला के गर्भ धारण कैला के दिन से 1000 दिन बच्चा के देखभाल आ पोषण के विशेष महत्ता होला। कहला के मतलब ई बा कि बच्चा जब अपना महतारी के गर्भ में पल रहेला तो ओ बेरा बच्चा के विकास बदे महतारी का खान पान आ पोषण बदे ज्यादा ध्यान देवे के चाही। गर्भ धारण से लेके जन्म के बाद ले 1000 दिन बच्चा के पोषण खातिर विशेष ध्यान देवे के चाही। काहे कि शुरुआती समय भा आरंभिक अवस्था में उचित पोषण नहीं मिलला पर बच्चा के मस्तिष्क विकास में रुकावट आ सकेला। बच्चा के शारीरिक बढ़ोतरी आ विकास बदे बच्चा के उम्र का क्रियाशीलता आ गतिविधि के ऊपर बाल पोषाहार का मात्रा निर्भर करेला। आई देखल सुनल जाए कि बच्चा पैदा भइला से लेके बाल्यावस्था ले उम्र के हिसाब से बाल पोषाहार पर विशेष रूप से का ध्यान देवे का चाहे आ कब कितना आ कैसे का देवे के चाहे। पैदाइश का समय, बच्चा पैदा भइला के 1 घंटा के भीतर महतारी के स्तनपान जरूर करा देवे के चाहे। काहे से कि ई दूध बच्चा के जिंदगी भर खातिर अमृत के समान होला। ई पोषण के साथे साथे रोग प्रतिरोधक क्षमता ले बढ़ावेला। बच्चा के जन्म से 6 महीना तक पोषाहार, जन्म से लेके 6 महीना ले सिर्फ महतारी का स्तनपान करावे के चाहे। महतारी का दूध के अलावा बाहर से कोनो चीज ना देवे के चाहे, यहाँ तक कि एक बूंद पानी तक ना। 6 महीना ले बच्चा के पेट के आकार छोट होला, बाहरी आहार ना पची पावेला आ बीमार भइला के खतरा ढेर रहेला। वैसहु महतारी का दूध में बच्चा बदे जितना पोषण के जरूरत 6 महीना ले रहेला उ सब होला। बच्चा के वजन करावत रहे के चाहे, तबे बच्चा के सही विकास पता चली पाए। 7वां महीना, 6 महीना बाद बच्चा के शारीरिक जरूरत बढ़ जाला, यही से महतारी का दूध के अलावा बाहरी पोषण का जरूरत पड़े लागेला। बच्चा के शारीरिक हलचल क्रियाकलाप बढ़े लागेला, जौना के चलते ढेर ऊर्जा आ ताकत के जरूरत पड़े लागेला। 6 महीना बाद बच्चा बाहरी आहार पचावे लायक धीरे धीरे होखे लागेला आ स्वाद के तंतु विकास करे लागेला आ धीरे धीरे चबाए आ घोटे का प्रक्रिया शुरू होखे लागेला। 7वां महीना में दाल का पानी, दलिया, दाल भात, मिसल रोटी, मसलल साग आ फल 2 से 3 चम्मच दिया सकेला। साथे साथे महतारी अपन स्तनपान जरूर करावत रहे। 8वां महीना, 5-6 दाल, दाल भात, दाल रोटी रोज थोड़े थोड़े मात्रा बढ़ा के देवे के चाहिए। फल, दूध, दूध से बना

0: आहार आ अंडा थोड़े थोड़े मात्रा में देवे के चाही। साथे साथे महतारी के नियमित रूप से बच्चा के स्तनपान करावत रहे के चाही 9 महीना से 12 महीना। पंचोछर दाल, दाल का पानी, दाल भात, दाल रोटी धीरे धीरे रोज बढ़ा के देवे के चाही। साफ धोवल काटल फल बिना मसलल भोजन दिन भर में 3 बेर देवे के चाही। साथे साथे महतारी नियमित रूप से स्तनपान करावत रहे 1 बरिस से 5 बरिस। घरे बनावल साफ सुथरा भोजन, साफ धोवल काटल फल के साथ कम से कम 3 बेर भोजन आ 2 बेर नाश्ता जरूर देवे के चाही। गाय का दूध के सेवन करावे के चाही। 6 बरिस, 6 बरिस के बच्चा के 120 ग्राम अनाज, 45 ग्राम फलिया, 100 ग्राम सब्जी, 75 ग्राम फल आ 400 ml बाहरी दूध आ 25 ग्राम ले बसा देवे के चाही। 7 से 12 बरिस ले बच्चा के पोषण, इस समय बच्चा लोग का विद्यालय में ज्यादा सक्रियता के साथ शारीरिक परिवर्तन के होला। ए उम्र में बच्चा लोग के प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन का जरूरत ज्यादा होला। 9 बरिस की उम्र ले लड़का और लड़कनी दोनों के बराबर बराबर पोषण के जरूरत होला। बाकी ओकरी बाद दोनों के अलग अलग मात्रा में आहार के जरूरत होला। ए उम्र में नाश्ता जरूर देवे के चाही, काहे से कि ए से बच्चा के शारीरिक और मानसिक कार्य कैला के क्षमता बढ़िया रहेला। विद्यालय में टिफिन के साथ ही जरूर भेजी जौन हल्का अपोषित आहार वाला होके। दोपहरिया में स्कूल से अयला के बाद भोजन जरूर कराई। संझा बेरा उबलल आलू आ अंकुरित मूंग आ कोनो हल्का आहार जरूर देवे के चाही। रात्रि भोजन में रोटी, दाल, सब्जी आ सलाद दी 1 गिलास दूध जरूर देवे के चाही। कुल मिला के बचपन सबसे बढ़िया विकास का समय होला। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे बदे उचित ढंग से बनावल आहार ढेर जरूरी होला। बचपन में शरीर के हड्डी का विकास बहुत तेजी से होला। एक खातिर कैल्शियम से भरपूर आहार जैसे दूध, पनीर, दही, पालक और ब्रोकली के सेवन जरूर होला। बचपन के समय कैलोरी ऊर्जा के जरूरत पूरा करे बदे कार्बोहाइड्रेट और फैट के जरूरत विशेष रूप से होला। जौना के पूरा करे खातिर साबुत अनाज जैसे गेहूं का रोटी, चावल, मेवा, तेल और फल जरूर देवे के चाहे। सब्जी में आलू, केला, शकरकंद के साथे और यो हरिहर सब्जी का सेवन रोज करावे के चाहे। बचपन के समय एंटीबॉडी आ मांसपेशी का विकास बदे प्रोटीन से भरपूर आहार का विशेष रूप से देवे के चाही। जौना के पूरा करे बदे मांस, मछली, अंडा, दूध आ दूध से बनल पदार्थ का जरूरत विशेष रूप से होला। ध्यान देवे जोग बात ई बा कि बच्चा लोगन के जंक फूड से दूर रखे के चाही, ना तो एके दूरगामी दुष्परिणाम होला। जैसे आगे चली के मोटापा, मधुमेह आ दिल का बीमारी का खतरा बढ़ी जाला। हम इतना जरूर कहल चाहब कि गर्भवती महिला का खान पान का विशेष ध्यान देत बच्चा लोग के शुरू से उचित आ संतुलित आहार जौन घरे बनल होके ओकर सेवन करावे आ बच्चा लोग के सेवन करे का आदत डारे का चाहे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनावल जाला, जौना के मुख्य उद्देश्य बढ़िया स्वास्थ्य और पोषण खातिर जागरूकता बढ़ावल हो। ई महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर आवे वाला खाद्य बोर्ड के तरफ से आयोजित कइल जाला। संतुलित अपोषित आहार के विषय में जानकारी लेके बच्चा लोगन के नाश्ता, दोपहरिया का भोजन, संझा बेरा का नाश्ता, राति बेरा का भोजन देवे के चाही, जैसे बच्चा लोगन के शारीरिक आ मानसिक विकास बढ़िया होके। जैसन कि हम पहले बता रहल बानी, संतुलित आहार ओके कहल जाला जौना आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और वसा के औसत मात्रा बढ़िया होके। बच्चा लोगन के भोजन में साबुत अनाज के साथे दूध, दही, फल और सब्जी जरूर शामिल करे के चाही। ई सब सुन्नर स्वास्थ्य और सेहत बदे बहुत जरूरी होला। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से किसिम किसिम का पोषाहार कार्यक्रम चलत रहेला, जहाँ से पोषाहार के विषय में जानकारी तो मिलिए सकेला, साथे साथे बाल पोषाहार ले बाटल जाला। आजुकाले तो लगभग हर गांव में आंगनवाड़ी बाटे, जहां अनुपूरक पुष्टा आहार के व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रहल बा।
1: डॉक्टर अनामिका शर्मा जी के बहल जद

0: धन्यवाद और एक ही साथ अपने बैठकी के आगे बढ़ाओ, सुन ले जाएगो काव्य पाठ देशभक्ति भरा जनबा और एक सुनाओ थे बहन माधुरी सिंह चीते आई सुनल जा।
1: अपने देशभक्ति रचना के साथ रउआ लोग के बीच उपस्थित बानी सुनब सभे मिलके।

जहवा देव समान केहू अनजान के पाव पुजाला। तोता मैना कोयल के सुन्नर संगीत सुनाला। जहवा देव समान केहू अनजान के पाव पुजाला। ऐसन धरा धाम सगरो ऐसन धरा।

और गीत के ई बंद पहले से पहले रउआ लोग के बतावल चाहतनी, पूरे विश्व में कौनो ऐसा देश नइखे जेके माता कहकर संबोधित कइल जाए, आ एकमात्र अपन देश बा जेके हमनी के प्यार से भारत माता कहनी। बंद सुनब सभे। कन कन में उपकार धर्म धरती के कहे जे माता, कन कन में उपकार धर्म धरती के कहे जे माता, हिंद

कहल जात है इस समय जौन है आम का सीजन चल रहा बा, और इस आम का हम चाहें तो कई तरीके से ओकर हम संरक्षित कर सकत हैं, चाहें तो के मुरब्बा बना सकत हैं, और सबसे जौन जरूरी है खाना के समय प्रयोग कर जाला अचार जौन है हर घर में पावल जाला, तो आम का हम अचार बना सकत हैं। आम का अगर जो कहल जाए तो अमावट बना के भी हम अंजा संरक्षित करते हैं, ताकि जब सीजन न रहला पर हम ओकर प्रयोग कर सकत हैं। तो बहन सभी अपने बैठकी में बहुत सारी जानकारी मिलल, और यही के साथ समय भी इशारा कर रहा बा लेवे खातिन विदा। तेही नारा के साथे बहन सब नमस्ते, नमस्ते।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी केंद्र से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। गृहमंत्री अमित शाह आज गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में हिस्सा लेना है। इस मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहने की एन

0: यारफ दुई दशक के कम समय में देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा जीत ले हवे।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिफाइनिंग 9 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोग्रेस टू प्रॉस्पेरिटी उत्तर प्रदेश लीड्स अहेड कॉन्क्लेव में शामिल भेल हैं। ए मौका पर वहां के कहने की प्रदेश के अंदर अब कौनहु सेक्टर में चाहे वो सुरक्षा हो खे, रोजगार हो खे, आ चाहे एग्रीकल्चर ग्रोथ, विकास का एगो नया मॉडल देखे के मिल रहल बा।
2: अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। 75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल का पहला बैठक कैलें। इस दौरान मुख्यमंत्री मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण आ उत्तरदायी कार्य संस्कृति के बढ़ावा देवे बदे महत्वपूर्ण निर्देश देने। वहां के कहने कि यह समय का वैश्विक परिस्थिति के देखत ईंधन संरक्षण खाली आर्थिक जरूरत नहीं बा, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचत को अपील आ प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल का असर दिखाई देवे लागल बा। प्रस्तुत बाई गो खास रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन आज अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली में बतौलिन कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद सरकार के कई गो पहल के नाते देश में ईंधन का पुरहर स्टॉक उपलब्ध बा।
4: एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: मौसम विभाग बिहने से मौसम शुष्क रहने का संभावना जतौले हो। विभाग प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी जिलन में बिहने से दिन के समय कहीं कहीं लूहो चलने का येलो अलर्ट जारी कैले बा। ए बीचे पछिला 36 घंटा में आंधी पानी या बिजली गिरने के घटना में प्रदेश भर से करीब 60 जने का मौत आ सैकड़न लोगिन के घाही भैले का समाचार बा। एगो रिपोर्ट।
5: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम में भइल बदलाव के नाते होखली जन धन के हानि के देखत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीनियर अधिकारियों के साथे बैठक कई के प्रभावित लोगों के मुआवजा देहले का निर्देश देहले हमें। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिफाइनिंग 9 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोग्रेस टू प्रॉस्पेरिटी उत्तर प्रदेश लीड्स अहेड कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर अब किसी भी सेक्टर में, चाहे वह सुरक्षा हो, रोजगार हो या फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ, विकास का एक नया मॉडल देखने को मिल रहा है।
2: अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। 75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन आज अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद सरकार की विभिन्न पहलों के कारण देश में ईंधन के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं।
4: एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, LPG और LNG इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: मौसम विभाग ने कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कल से दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच पिछले 36 घंटों में आंधी पानी व बिजली गिरने की घटनाओं में प्रदेश भर से करीब 60 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के समाचार हैं। एक रिपोर्ट।
5: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम में हुए बदलाव के कारण हुई जनधन की हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम खेती बारी बस कुछ ही पलों में।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पंचो जय जवान जय किसान।
7: हाँ बहन, यही नारा के साथ हमन के जौन खेती बाड़ी के कार्यक्रम बहुत शुरू भइल, और हमन के जौन कार्यक्रम हवे ये दैनिक कार्यक्रम हवे, और ये कार्यक्रम में हमन के अपने पंच सभे से कुछ मोट छोट लेकिन मोट बाती के चर्चा करे नहीं, जौन कि कबो कबो अपन किसान भाई हो सकेला भुला जात हो, चाहे उनकी याद भी होते हो के बस चर्चा होले से तनी उनके जौन बात जौन धूल जमल होला उ तनी साफ हो जाला। तो हमन के कार्यक्रम में अपने आज बात कल जाए बहुवर्षी खरपतवार के नियंत्रण कैसे अपन पंच सभी कह सके ना।
8: देखिए पंच भाई लोगन जब हम जब खेती का काम करी ला तो सबसे पहले समस्या जो आ जाले तो खरपतवार का आ जाला, और ए समय जो है पंच भाई लोग जैसे गेहूं का फसल कटले बा उनकर खेत जो है खाली है, तो एक नियंत्रण करे खातिर सबसे पहला काम तो ये करें पंच भाई लोग कि खेत के जो है गहरी जुताई करें, मतलब एक पलटा मिट्टी पलटवाए वाले हल से खूब गहरी जुताई करा दें, जिससे जौन खर पतवार उगर हुई हैं ये धूप में जल करके वो जड़ से ख़त्म हो जाएं। सबसे जौन आसान तरीका है और जैके आप बहुत आसानी से जौन में कोनो तरीके का किसान भाई लोगन के दिक्कत ना हो तो के आसानी से आज जब लोग कि हर लोग करावे भी लें काम,
7: और साथ ही साथ अपन किसान भाई लोग जौन बांटना है वो फसल चक्र के भी अपना के ई खर पतवार के जौन बहुवर्षीय हर वर्ष 2 साल में हर वर्ष जौन बा आ जाना है उसे जौन बा छुटकारा पा सके ना। लगातार एक ही फसल के ना लगा के कई तरीके के फसल जौन बा बदल बदल के लगावल जा, ये विधि के अपनैले से भी हमन के खर पतवार से बचल जा सकेला।
8: कहले का मतलब है कि जौन मोथा दूबा हिरन खुरी गाजर घास ये ऐसा फसल है जौन दू तीन तीन साल तक ही खेत में पड़ल रही हैं तो ये ख़त्म ना होली, तो ये लंबे समय तक खेत में रहली, और एकर सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये फैलत रहला है तो उसे और संख्या जौन एकर संख्या वाला बढ़त जाला, तो एक नियंत्रण करे खातिन जौन किसान भाई लोग अपने खेत के जुताई तो करबे करिए, पर एक चीज़ और काम कर सकत हूँ कि अगर जो मल्चिंग विधि का प्रयोग करें तो उसे भी मल्चिंग विधि में का कर जाला कि जौन खर पतवार हों ओके प्लास्टिक से या कहल जाए कि जौन जैविक कचरा हवा पराली जौन हो गई उसे पूरी तरीके से जब ढक दिया जाला तो के धूप ना मिली तो पन पीना और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाए। और कह सकत हूँ कि जौन सबसे जौन निराई और गुड़ाई कर जाला ऐसे किसान भाई लोगों के जड़ से अच्छी तरीके से निकाला तो धीरे धीरे जौन खर पतवार पर कम होके ख़त्म हो जाला। और बतावले गई बा कि वो हमंजा फसल चक्र अपनावल जाए, और एक तरीका और भी अगर जो सघन हमंजा फसल का बुआई करत हैं तो ऐसे भी जौन खर पतवार का नियंत्रण कर जा सकेला। और तो एक महा की प्रतिस्पर्धा फसल यदि लगावल जात बा जेकर वृद्धि प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि बहुत तेजी से जौने का विकास होगा तो उनमें क्या होला कि खर पतवार छोट रह जाला और फसल बहुत तेजी से बढ़ जाले तो उनका जौन पनपे जौन घस अरे जो
7: बार बार होले का प्रक्रिया वो समाप्त धीरे धीरे हो जाए।
8: हाँ ओकरे अलावा हम जा और भी काम कर सकते हैं जैसे रासायनिक नियंत्रण विधि जो कर जाला एकर प्रयोग सब लोग कम करेला लेकिन एकरे द्वारा भी लेकिन एकर प्रयोग तभी कर जा सका था जब खेत पूरी तरीके से खाली रहा, तो में ग्लाइफोसेट का प्रयोग करके हम खेत में जितना भी घास फूस हम ओकर खरपतवार हों ओकर हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन एकर प्रयोग तभी हुई कि जब खेत में कोनो प्रकार का बीज न लगल हो खा फसल ना लगल हो खत्म। और लास्ट में अगर जो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि गोबर का खाद हर किसान भाई लोग प्रयोग करेला तो एक जब उकर प्रयोग तबे करी जब वो पूरी तरीके से सड़ गए लोग ताकि उस गोबर में जौन भी बीज होखें फसल का बीज होखें वो भी अच्छी तरीके से सड़ जाए, एक तरीके से हम हंजा नियंत्रण कर सकत हैं। और जब भी बीज का प्रयोग करी तो बीज हमेशा साफ हो, उनमें कोनो प्रकार का मिलावट ना होकर, ताकि केवल जौन फसल के हम लगावत हैं वही का बीज होकर, ऐसे भी खरपतवार का नियंत्रण कैल जा सकेला।
7: हाँ बहन, ई तो हो गई हमन के चर्चा। अब यही के साथ हमन के अपने बैठकी के आगे बढ़ावत सुन ले जाएगो जानकारी उन्नतशील कृषि यंत्रों द्वारा कृषक महिलाओं का प्रशिक्षण, जे पे जानकारी देते डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह जी, ताए सुनल जा।
9: खेती और श्रम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह वाक्य किसान महिलाओं के जीवन में बिल्कुल सटीक बैठता है, शायद इसलिए भी कि युग परिवर्तित तो हुए परंतु किसान महिलाओं के जीवन में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुए। खेती के श्रम साध्य औजारों से अनभिज्ञ कृषक महिलाओं का जीवन कठिन श्रम भरे दुष्कर कार्यों से अटा पड़ा है, और यहाँ ये उन्नत कृषि औजार किसान महिलाओं के साथी बन गए, वहाँ परिवर्तन की लहरें नजर आने लगी हैं। कुछ ऐसे ही उन्नत कृषि यंत्रों के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिन यंत्रों का उपयोग महिलाएं अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ कम समय, शक्ति व पैसों में आसानी से अपने खेतों के कार्यों को पूरा कर सकती हैं। इनमें सबसे पहला कृषि यंत्र है पहिए वाला वीडर। पारंपरिक विधि से महिलाएं खुरपी, दराती व कुदाल से फसलों के बीच उगी खरपतवार निकालती हैं, जिससे उन्हें दो दिन प्रति बीघा प्रति व्यक्ति के हिसाब से समय देना पड़ता था। वहीं अगर इस वीडर की को उपयोग किया जाए तो यह कार्य आधे दिन में एक बीघा खेत की खरपतवार निकाली जा सकती है। खुरपी कुदाल द्वारा काम करने से कंधों, कमर, पैरों के ऊपरी व निचली भाग में लगभग शरीर के हर हिस्से में दर्द हो जाया करता था। दर्द के कारण घर के अन्य कार्य करना मुश्किल हो जाता है। यदि मजदूरी की बात करें तो एक दिन में 150 से 200 का खर्च होता है, और खर पतवार तो हर दिनों में बार बार निकालना ही पड़ता है। इस तरह देखें तो वीडर का उपयोग बहुउपयोगी है। वीडर की कीमत लगभग 1200 से 2200 तक की होती है, और इससे 34% श्रम न्यूनीकरण किया जा सकता है। मजदूरी में भी 720 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति बीघा की दर से कमी की जा सकती है। दूसरा यंत्र है उर्वरक छिड़काव यंत्र। पारंपरिक विधि से किसान आज भी बोरे में उर्वरक लेकर उसे कंधे पर झोले की भांति लटकाकर उर्वरक अपने खेत पर डालता है। बोरा प्लास्टिक का होने के कारण कंधे छिल जाते हैं, और यदि महिला उर्वरक डालती है तो वह छोटे छोटे बर्तनों में उर्वरक रख कर कई चक्कर आ जाकर उर्वरक छिड़काव का कार्य करती है। इससे भी समय अधिक लगता है और महिलाएं थक जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथों द्वारा छिड़काव करने से उर्वरक एक साथ फसलों पर नहीं पड़ता, कहीं जाता, कहीं कम और कहीं कुछ भी नहीं। नवीन तकनीकी में उर्वरक छिड़काव यंत्र का उपयोग करने से एक व्यक्ति 10 मिनट में 0.2 हेक्टेयर आराम से पूरा कर सकता है। इससे श्रम, शक्ति के साथ साथ उर्वरक के माध्यम से पैसे की भी बचत की जा सकती है। एक और यंत्र है बैटरी चलित कीटनाशक छिड़काव यंत्र। कृषक महिलाएं घर के कार्यों के साथ साथ पति के साथ खेत के सभी कार्यों में पूरी मदद करती हैं। नतीजतन कीटनाशक छिड़काव यंत्र में भी मदद करती हैं। इसे नैपसैक स्प्रेयर भी कहते हैं। पारंपरिक विधि में यह मशीन हाथ से चलाई जाती थी। मशीन का लीवर चलाने से मशीन चलती, परंतु उससे हाथों व कंधों में असहनीय दर्द हो जाता। पारंपरिक विधि से एक व्यक्ति 1 हेक्टेयर 4 दिन में छिड़काव कर पाता। आधुनिक यंत्र की बात करें तो यह मशीन बिजली से चार्ज की जा सकती है, जिससे ना हाथ से लगातार लीवर चढ़ाना पड़ता है और ना ही दर्द की समस्या होती है। इस मशीन से एक व्यक्ति 1 हेक्टेयर 2 दिन में ही पूरा कर लेता है, जिससे श्रम शक्ति की भरपूर बचत होती है। साथ ही छिड़काव भी लंबी दूरी तक और एक सार हो जाता है। इस मशीन की कीमत लगभग 4000 रुपए व कार्य क्षमता 0.2 हेक्टेयर प्रति घंटा है। मशीन में श्रम में कमी 60% तक मापी गई है। इससे थकान में भी 40% तक कमी आती है और समय की 23% बचत होती है। उन्नत दराती को हरा चारा काटने व पकी फसल काटने में उपयोग किया जाता है। उन्नत दराती का वजन काफी कम होता है और इसके दांत नुकीले होते हैं। इस दराती को बार बार धार देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे दराती से कटाई होती है वैसे वैसे इसकी धार अपने आप धारदार होती जाती है। इस दराती की कीमत 40 रुपए से लेकर 120 रुपए तक है व इसकी कार्य क्षमता 0.18 हेक्टेयर प्रति घंटा है। इस दराती द्वारा हरा चारा काटने से 22% श्रम की कमी होती है और यदि इसी दराती से किसी पकी हुई फसल को काटे तो लगभग 41% की कमी मापी जा सकती है। समय की बचत की बात करें तो 52% समय की बचत होती है। मूंगफली की कलियां निकालने का यंत्र, यह यंत्र कंघी नुमा आकार में होता है। अक्सर महिलाओं को मूंगफली की कलियां हाथों से निकालते देखा गया है। महिलाएं कलियां निकालने के लिए मूंगफली के पौधों को एक हाथ से पकड़ती हैं और दूसरे हाथ से एक एक कलियां पौधों से अलग करती हैं। इससे महिलाओं के अंगूठे में छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी उनके हाथ कट भी जाते हैं। इससे बचने के लिए और इस कार्य को आसान बनाने के लिए गृह विज्ञान महाविद्यालय MPUAT उदयपुर ने कंघी नुमा मूंगफली की कलियां निकालने का यंत्र विकसित किया, जिसका कुल वजन मात्र 300 ग्राम है और कीमत 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक है। जबकि पारंपरिक विधि से महिलाएं एक घंटे में 15 से 20 किलो तक कलियां निकाल पाती हैं, परंतु आधुनिक विधि द्वारा एक घंटे में 50 किलोग्राम मूंगफली की कलियां निकाली जा सकती हैं। एक दूसरा यंत्र है जिससे मूंगफली के बीज निकाले जाते हैं। मूंगफली की कलियां निकालने का काम जितना कठिन है उससे भी कठिन है एक एक मूंगफली के बीज निकालना। इस कार्य के लिए महिलाओं को बहुत समय देना पड़ता है। पारंपरिक विधि में महिलाएं मूंगफली की कलियों को बोरे में भरकर जमीन पर पटकती हैं, फिर छिलके से दाने को अलग करती हैं। इस तरह से दाने बीज के रूप में लेने लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि दाने कहीं टूट जाते हैं या दानों को चोट लग जाती है। बीज के रूप में लेने के लिए एक एक मूंगफली को पत्थर की मदद से फोड़ा जाता है और दाने को चोट ना लगे और सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, ताकि उस दाने को बीज के रूप में उपयोग किया जा सके। यहाँ भी यही समस्या है कि महिलाओं के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। बार बार जोर पड़ने से कलाई, हथेली आदि में दर्द होने लगता है। समय भी अत्यधिक लगता है, ऊर्जा भी उसी प्रकार खर्च होती है। लगातार बैठे रहने से कमर में, कंधों में दर्द हो जाता है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने मूंगफली छीलक यंत्र बनाया, जिससे 34% श्रम में कमी हो जाती है। थकान लगभग 30% तक कम की जाती है। मशीन को खड़े होकर या बैठकर जैसी सुविधा हो वैसे चलाया जा सकता है। मशीन में लीवर होता है, लीवर को आगे पीछे घुमाने से मूंगफली के दाने जाली के द्वारा नीचे गिर जाते हैं। मूंगफली के आकार के हिसाब से मशीन की जाली बदली जा सकती है, छोटे दाने के लिए छोटी जाली और बड़े दानों के लिए बड़े आकार की जाली। इस मशीन द्वारा एक घंटे में 40 से 50 किलोग्राम प्रति घंटा बीज निकाला जा सकता है। मशीन की कीमत लगभग 3500 से 4000 रुपए होती है। नली दाल मक्की छीलक। मक्की के दाने हाथों से निकालना बहुत ही समय लेने वाला, थकाऊ एवं मुश्किल भरा कार्य है। पारंपरिक तौर पर महिलाएं दो भुट्टों को आपस में रगड़कर या फिर सारे भुट्टों को बोरी में भरकर उन पर लकड़ी के मोटे डंडे से चोट करके दानों को भुट्टे से अलग करती हैं। भुट्टों को आपस में रगड़कर उंगलियों की सहायता से दाने अलग करना बहुत ही धीमी गति का कार्य है। साथ ही उंगलियों को जख्म भी होता है। डंडे की चोट से दानों को अलग करने का कार्य श्रम भरा तो है ही, इससे मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द की समस्या भी बननी रहती है। इसके अतिरिक्त भी मक्की के दानों को कूटकर अलग करने से वे दाने बुवाई के लिए उपयुक्त नहीं रह पाते हैं, अतः वह बीज के लिए काम में नहीं लिए जा सकते हैं। मक्की छीलक इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाता है। इससे बड़ी ही आसानी से मक्की के दानों को अलग किया जा सकता है। इस मशीन द्वारा एक व्यक्ति एक घंटे में लगभग 30 किलोग्राम दाने निकाल सकता है, जबकि पारंपरिक विधि से एक घंटे में एक व्यक्ति सिर्फ 2.5 किलोग्राम दाने ही निकाल सकता है। ऐसे ही बहुत सारे खेती के आधुनिक उपकरण हैं, जिसका उपयोग कर महिलाएं कम श्रम और कम समय में अधिक उत्पाद कर सकती हैं, साथ ही पैसे की बचत भी कर सकती हैं। अन्य उपकरण जैसे बहुउद्देशीय रेक, डस्टर, जड़ उखाड़ने का यंत्र आदि का उपयोग कर कृषि में उन्नति के नए आयाम को हासिल किया जा सकता है। इसलिए आप सभी कृषक महिलाओं से अनुरोध है कि नए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर प्रधानमंत्री जी के 2022 तक आय दुगना करने के लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करें।
8: पंच भाई, अभी आप सुनल गेल एगो वार्ता उन्नतशील कृषि यंत्रों द्वारा कृषक महिलाओं का प्रशिक्षण, जे पर जानकारी देत रहनी डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह। इतना निमन जानकारी देवे खातिर इनके दिहल जा धन्यवाद। और अपने बैठकी में मन मन साइन करे खातिर सुनल जाएगा लोकगीत।

0: पंचायत सुनद्रला ई गीत और यही के साथ ही कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ सुन ले जाए एगो और जानकारी पशुओं के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता जे पे जानकारी देता हूँ डॉक्टर एस राम जी और उनसे बात करा था विनय कुमार ताई सुनल जा।
1: पशुपालक भाई हमान का जितना भी पशुपालन का काम करे ली ओमे सबसे महंग चीज होला वो होला उनका आहार। वैसे तो परंपरा के हिसाब से हमान का कृषि का जौन उत्पाद रहला चोकर चूनी दलिया और पुआल भूसा या हरा चारा बरसी मुगा के पशुअन के आहार का पूर्ति कर लिहल जात रहला। लेकिन जब से डेयरी उद्योग बढ़ल शहर में खास तौर से खेत न

0: पिला के कारण से पूरा का पूरा आत्मनिर्भरता बाटे। तवन पशुपालन में सिर्फ भूसा आ सूखा चारा दाना के रूप में खली के रूप में हो गई बाटे। दाना ज्यादातर लोग बाजार से खरीदा था ना, ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग अब बाजार से दाना ले जाता ना, लेकिन घर पर दाना बनावे खातिर आ ओमे खास तौर से जौन खनिज मिश्रण बाटे, खनिज लवण बा, जौना का दूध उत्पादन आ पशु पोषण में स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेला, ओकर का योगदान बा। अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं वरिष्ठ पूर्व कृषि वैज्ञानिक पशुपालन डॉक्टर यश राम, कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत बा। खनिज लवण का मिश्रण कैसे तैयार करे के चाही आ एकर महत्ता का बा पशु पोषण में?
1: देखा भैया, ये हमारे जो पशु हुआ ये एक तरह से हमरे मतलब किसान भाई के वो एक दूसर आर्थिक महत्व वाला जीव हुआ। इनके रख रखाव खातिर तमाम तरह के लोग उनका आहार देवे करल हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो खनिज लवण। खनिज लवण में ये जो देखा कई तरह के एमन तत्व हुआ जौन की सूक्ष्म रूप में अति सूक्ष्म रूप में आवश्यक होला है और उनके कमी से पशुअन में तमाम तरह का रोग बीमारी पैदा हो जाला। पहला तो है कि हमारे यह जौन पशु गाभिन होले तो उनके स्वास्थ्य बदे पेट में पले वाला जौन बच्चा होला ओकरे स्वास्थ्य बदे प्रमुख रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि का जौन है प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाला। अगर कैल्शियम फास्फोरस की कमी है तो एमन जानत बा पेट में पले वाला बच्चा भी बहुत कमजोर होई और जब पशु बच्चा दे तो ओके जौन है एकाएक बीमारी का लक्षण दिखाई दी। वो पशु अपन चारा खाप कम कर दी है, इतना कमजोर हो गई है कि वो जमीन पर कभी कभी लेट जाले, बैठ जाले तो वो उठ ना सकल है। जौने के पशु के पियले के बाद में बच्चा दिहले के बाद में जौन रोग होला ओके लोग कहल है कि भैया इनके कैल्शियम का कमी हो गई ठेठ भाषा में। लेकिन हम सब डॉक्टरी के भाषा में के कहल जाला कि पशु के मिल्क फीवर हो गई बा। तो जौन हो खनिज लवण इतना महत्वपूर्ण चीज हो कि जौन किसान भाई अगर पशु के ना देत हुआ तो उनकर पशु 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर दूध देवे वाला वो 3-4 लीटर के दूध उत्पादन पर आ जाला। अब एक पूरा करे खातिर किसान भाई अपने यहाँ खुद एक व्यवस्था कह सकलन और वो कैसे अपने यहाँ खुद बनावे और देखे एमन 3-4 चीज बहुत महत्वपूर्ण होला। पहला तो जौन पहले देखल रही है कि लड़कन के लिखे खातिर दुधिया आवत रहे, दुधिया ये पहले अपने यहाँ प्रयोग के तौर पर ही नहीं कि इकट्ठा बना के रख ले, अपने यहाँ प्रयोग के तौर पर 1 किलो दुधिया ले ले, आधा किलो ओमेन नमक मिला दें और ओमेन जौन हो 100 से 150 ग्राम ये लोकल हरदी जौन होला पीसल एके मिला दें और एमएन 10 ग्राम ये तूतिया या कापर सल्फेट जौन होला एक ही मिला के, ये तो बहुत थोड़ी मात्रा में हो, अब ये एक ही मिला के सब रख ले और एक पशु के जौन 6-7 लीटर दूध देता है ओके 50 ग्राम 60 ग्राम रोज दे तो ऐसे देखें कि उनके पशुओं पर क्या असर पड़ेगा और उनके पशु पर कितना दूध बढ़ जाए। एमएन दूध बढ़े का व्यवस्था नहीं बा, लेकिन ये भी देखें कि दूध बढ़े के साथ साथ हमारे पशु का स्वास्थ्य भी
0: तो उन पशुपालन में जौन पोषण बा, अनाज बा, चोकर बा, चूनी बा, दाना बा, ओमे अगर घर पर बनावल खनिज मिश्रण का प्रयोग कइल जा तो दूध के उत्पादन में, बच्चन के विकास में, गर्भावस्था के दौरान या जौन उनका सेहत बा ओपर का असर पड़ी आ पैसा का कितना कटौती कैल जा सकेला, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच भाई, अभी आप सुनल गेल बातचीत पशुओं के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता जे पर जानकारी देते रहना डॉक्टर एसराम, इतना निमन जानकारी देवे खातिर इनके दिहल जा धन्यवाद। और अपने बैठकी का समय भी यही के साथ समाप्त हो रहा बात, यही नारा के साथ लिहल जा विदा। पंचों जय जवान जय किसान।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। प्रिया ग्राम शोधनपुर पोस्ट किड़ीहरापुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया। उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फिट, रंगोरा। ये 14 अप्रैल 2026 से लापता हैं। या इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया को सूचित करें। प्रीति उर्फ नेहा ग्रामो पोस्ट दुगौली सिकंदरपुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया। उम्र 23 वर्ष, रंग हल्का सांवला, चेहरा गोल, लंबाई 5 फिट। ये दिनांक 27 मार्च 2026 से लापता हैं। या इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।
1: नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं आरती सिंह।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज की कलाकार थीं अनीता सिंह। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। भोजपुरी कार्यक्रम देशमार, इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं भोजपुरी काव्य पाठ। कवि हैं गया शंकर प्रेमी।
1: एगो सैनिक के सीमा पर गोली लगल बा। वो अपनी साथी से शहीद भइला के पहले का संदेश देता ना, वह हम बतावे जात बानी। किमी

के चिरई सोनवा कज लूटत बाटे। जा ललकार जवानन से घुस पैठिन के खून से रंग दीहे। तिरंगा न झुके पावे कबहु दुश्मन के सीना में सीधे गाड़ी दी है। तिरंगा न झुके पावे कबहु दुश्मन की सीना में सीधे गाड़ी दी है। जब लासी जाई गौआ हमारी घर वालन के संतोष धरई ह। जब लासी जाई गौआ हमारी घर वालन के संतोष धरई ह। अपनी ललना के छुपाईली देख के माई रो में त तू चुप करई ह। कही ह तो हर बेटा न कायर ह सिनेमा खोल के सामने देख लै ह। दूधवा न तोहार बेकार गइल धनी कोखी अमर बाई हे समुझई ह। दूधवा न तोहार बेकार गइल धनी कोखी अमर बाई हे समुझई ह। दुअरे पर बाबूजी से कही ह आखिरी जय हिंद हमार बली है। हम लाठी बुढ़ौती कना बनली किस्मत में न रहे क्षमा कई दी है। जवने हथवा से मिठाई खियौले वही हाथ चीता के आगे में दी है। जवने हथवा से मिठाई खियौले वही हाथ चीता में आगे के दी है। देश सेवा में काम आइल देहिया देश सेवा में काम आइल देहिया वासी सतनी मोरी भागी के दी है। तनी जीवन साथी से जा कही ह माई बाबू का सेवा बराबर करी है। रखी आखी दिने बहिना न रोवे दिल से तनिको उनके न बिसरी है।

करी हैं, रोई हैं जनी लो रख पियल करी हैं। माई पर कविता है गोबा, क्षमा दया ममता बरसावेली सागर से गहरा होली माई, सुखी रहे औलाद सदा जे मनौती मांगे या चरा फैलाई, संकट में

हाल बिगाड़ी ली हैं, जेकरा के आशीष देले बड़ी माई। ऊंचा आकाश से बादर जा, धरती से बड़ा दिल जेकर भाई। ऊंचा आकाश से बादर जा, धरती से बड़ा दिल जेकर भाई। धूप जड़ा बरसात तूफान में, रक्षा करे चरा के ओढ़ाई। सात उपास भले रही के, बचवा के भूखे न सुतावेली माई। माई न बाड़ी जेकर भलही, बाकी दर्द में कहे लमाई हो माई। बड़ बुजुर्ग के हुसा मुझावे, तर्क कुतर्क न करे के चाही। माई का गारी त आशीर्वाद है, भीतर क्रोध न धरे के चाही। लालच लोभ में स्वार्थ की खातिर, बुद्धि न केहू का छरे के चाही। माई की सोझा न हिस्सा की खातिर, बेटन का बोलड़े के चाही। पाप का नदी बढ़ी के तनो, बाकी धर्म का नाव मराइल नहीं खे। बाँस बरोबर धन होई, बाकी लोभ का घोड़ा धराइल नहीं खे। लाख कर चतुराई, मगर अनहोनी टरे से टराइल नहीं खे। भरी जाई तीन लोक भले, बाकी माई का कर्ज भराइल नहीं खे। एगो स्वच्छता पर गीत बा। शौचालय सैया जीवन घरे, शौचालय सैया जीवन घरे, जाई भी न सरे ही में। शौचालय सै

0: रात जली छोटकी नना दिया, डर लागे कौन लगावे जानी दगिया, लगब कपार तहिया धारे जाई बिना सरे ही में, लगब कपार तहिया धारे जाई बिना सरे ही में, शौचालय सैया जी बनी घरे जाई बिना सरे ही में, रात की अन्हरिया में बरिसी बदरिया, पेट जब खराब होई केहू का सवरिया, धावते में नानी लगी मरे जाई बिना सरे ही में, शौचालय सैया जी बनी घरे जाई बिना सरे ही में, जाई बिना सरे ही में, रात की अन्हरिया में बरिसी बदरिया, पेट जब खराब होई केहू का सवरिया, धावते में नानी लगी मरे जाई बिना सरे ही में, शौचालय सैया जी बनी घरे जाई बिना सरे ही में, सरकारी सुविधा बा सगरो आयल, गया शंकर प्रेमी जाके चुपे ले आयल, सरकारी सुविधा बा सगरो आयल, गया शंकर प्रेमी जाके चुपे ले आयल, मुना प्रचार नहीं करे जाई बिना सरे ही में, शौचालय सैया जी बनी घरे जाई बिना सरे ही में।
1: भोजपुरी कार्यक्रम देश हमारे के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी काव्य पाठ। कवि थे गया शंकर प्रेमी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। आइए सुनते हैं पंजाबी लोकगीत।

प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे LPG पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं वो ई व्हीकल चाहिए, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को

0: संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने दो दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
1: अब देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
2: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 सीटों के सापेक्ष 4,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: फिल्म संगीत का ये पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म बर्फी से।

लीजिए सुनिए फिल्म मेट्रो का ये गीत। अदनान सामी की आवाज में

0: 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट। इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं वार्ता योग और प्राचीन परंपराएं। वार्ताकार हैं नवनीत चौधरी।
1: इस विचित्र नाम रूप वाले संसार में जहाँ मनुष्य को किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो पाना कठिन है, वहाँ वेद शास्त्र संत महात्मा व ज्ञानी पुरुषों के वचनों का ही विश्वास करके चलना पड़ता है। इस प्रकार के आप्त ज्ञान को आगम अथवा शब्द प्रमाण कहते हैं। इसी ज्ञान परंपरा में महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रवर्तित योग दर्शन भारत की अमूल्य निधि है। योग को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, परंपरा से प्राप्त योग और दूसरा शोध के द्वारा आधारित इतिहास। योग का आरंभ शास्त्रों के अनुसार योग का उपदेश सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने सनकादिक को, उसके बाद विवश्वान सूर्य व रुद्र आदि को दिया। बाद में यह दो शाखाओं में विभक्त हो गया, पहला है ब्रह्म योग व दूसरा है कर्म योग। ब्रह्म योग की परंपरा ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार व कपिल, आसुरी, वडु, पंचशिक, नारद और शुक्र आदि ने शुरू की। यह ब्रह्म योग लोगों के बीच में ज्ञान योग, आध्यात्म योग और सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्मयोग की परंपरा विवश्वान सूर्य की। ये विवश्वान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्थ मनु को, मनु ने ऋषभ देव जी जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं, और उन्होंने इश्वाकु ने राज ऋषियों को ए प्रजाओं को योग का उपदेश दिया। फिर भगवान श्री राम को ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने यह ज्ञान दिया। परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान महर्षि सांदीपनी, वेदव्यास, गर्ग मुनि, घोर अंगिरस, नेमिनाथ आदि गुरुओं ने भगवान श्री कृष्ण को दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अंतिम यह ज्ञान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया। योग के इसी ज्ञान को बाद में भगवान महावीर ने पंच महाव्रत कहा और भगवान गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के नाम से विस्तार दिया। परंपरा से प्राप्ति है ज्ञान महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से जो संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में सहायक है। यह मार्ग 8 अंगों से बना हुआ है, जिसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में दिया। इस संबंध में योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि ने योग समाधि कहकर योग को समाधि के रूप में परिभाषित किया है, अर्थात कामना, वासना, आसक्ति, संस्कार आदि सब प्रकार की आगंतुक मलिनता को दूर कर स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, जीव का ब्रह्म होना समाधि है। हमें वेद, उपनिषद, स्मृति पुराण, रामायण, महाभारत तथा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर प्राचीन माहिष्मती नगरी के प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषों में योग साधना के प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं। पहला ही श्लोक में जो पतंजलि ने शुरू किया है वह अथ योगानुशासनम। चलिए अब

योग का अनुशासन शुरू करें। उसी प्रकार उन्होंने दूसरे में कहा, योगस चित्त वित्ती निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। मन को शांत करके बाहरी दुनिया और मन के विचारों से दूर रहकर योग की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इसी में आगे आदि शंकराचार्य ने वेदांत के माध्यम से इसका प्रचार किया। इसी ज्ञान को गोरखनाथ जी की परंपरा में नवनाथ व 84 सिद्ध नाथों ने हठयोग के नाम से आगे बढ़ाया, जिसके प्रमुख योगी गुरु मच्छेन्द्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी हैं। सह परंपरा के अनुसार योग का प्रारंभ आदिदेव शिव से होता है। शिव जी ने योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती जी को दी थी। शिव जी ने दूसरी शिक्षा कांति सरोवर के तट पर अपने 7 शिष्यों को दी, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। भगवान शिव की योग परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, रुद्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतश, मनु, भारद्वाज, अगस्त्य मुनि, नंदी, कार्तिकेय और भैरवनाथ आदि सभी ने आगे बढ़ाया। भगवान शिव के बाद योग के सबसे बड़े गुरु दत्तात्रेय जी थे। गुरु दत्तात्रेय जी की योग परंपरा में ही आगे चलकर आदि शंकराचार्य और गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा का प्रारंभ होता है। गुरु गोरक्षनाथ व नवनाथों के 84 सिद्धों की परंपरा में मध्यकाल में कई महान संत हुए हैं, जिन्होंने इस हठ योग को आगे बढ़ाया है। संत गोगादेव जी, संत शापीर जी, संत ज्ञानेश्वर जी, रविदास जी महाराज से लेकर परमहंस रमण महर्षि, आधुनिक युग में योगानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद नंद जैसे हजारों योगी हुए हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में योग में अपने विकास में अपना योगदान दिया है। इसी प्रकार योग के जो 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इनके बताए हुए लाभ के बारे में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। योग के जो प्रमुख 8 अंग होते हैं, जिस प्रकार एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, उसका प्रत्येक पाया अन्य पायों से जुड़ा रहता है। कुर्सी का एक पाया टूटने से या खींचने से कुर्सी ही गिर जाती है। उसी प्रकार से शरीर के विकास में भी उसके सभी अंग एक विकसित होते हैं। यम के मुख्य 5 भाग हैं, वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम है। अहिंसा कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठा यांस तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा से प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास वैर भाव छूट जाता है। अहिंसा का अर्थ है शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को भी आकारण हानि नहीं पहुंचाना, यही सच्ची अहिंसा मानी जाती है। दूसरा है सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य से प्रतिष्ठित हो जाने पर साधक क्रियाओं और उनके फलों की आश्रयता आ जाती है। जिस प्रकार सत्य भी इसी से है, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी भी प्रकार से झूठ ना बोला जाए, उसी को सत्य कहते हैं। यह सत्य आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिर रहना, जैसा विचार मन में है वैसी ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना, यही सत्य है। तृतीय है अस्ते। अस्ते ये प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्ते के प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी रत्नों की उपस्थिति हो जाती है। अस्ते अर्थात चोर प्रवृत्ति का न होना, दूसरे की संपत्ति पर लालच न रखना, इसे मन, वचन और कर्म से किसी की भी संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना, इसमें सभी शामिल हैं। चतुर्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। अर्थात ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठ हो जाने पर वीर्य का जो लाभ होता है। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ हैं, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, जिससे सभी इंद्रिया जनित सुखों में संयम बरतना, मुख्यतः किसी भी प्रकार की काम वासना से दूर रहना। पंचम है अपरिग्रह। अपरिग्रह्य स्थैर जन्म कथंता संबोधः। अर्थात अपरिग्रह स्थित होने पर भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जन्मों तथा उनके प्रकार का संज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह का मुख्य अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचय न करना, दूसरों की किसी भी वस्तुओं की इच्छा न करना, किसी भी सांसारिक वस्तुओं में अपनी आवश्यकता से अधिक मोह न रखना। ये 5 के 5 यम में आते हैं। इसी प्रकार नियम है। नियम के भी 5 भाग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच

0: अर्थात बाहरी और आंतरिक स्वच्छता का पालन करना। इसी में द्वितीय है संतोष, संतोष अर्थात संतुष्ट और खुश रहना। तब कठोरता और सहन शक्ति से उस प्रकृति का अभ्यास करना। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्त करना स्वाध्याय मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर या उच्च शक्ति में विश्वास रखना और पूर्ण रूप से उसमें समर्पण हो जाना, इसी का नाम ईश्वर प्राणिधान है। ये नियम के 5 भाग हैं। तृतीय है उसी में आसन, सन स्थिर सुखमासनम। किसी भी प्रकार के आसन में पतंजलि ने कहा है कि जिस प्रकार भी आप सुखपूर्वक बैठने की क्रिया में आसनस्थ हो जाएं या किसी भी प्रकार से आप एक लंबे समय तक किसी भी एक आसन को सिद्ध करें, जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, परिपक्त हो जाएगा, उसी समय उसको आसन शरीर को साधने लगेगा, उसी को संपूर्ण सुखम आसनम कहते हैं। पंचम है प्राणायाम। प्राणायाम, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। उस आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियम प्राणायाम है। प्राणायाम से मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। यह श्वास के माध्यम से जीवन शक्ति को नियंत्रित करने का एक साधन है। श्वास पूरक, प्रश्वास रेचक, इन दोनों के गति विच्छेद कुंभक, इनके संयोग से प्राणायाम होता है। इस सूत्र का आशय है प्राण शक्ति की ऊर्जा, शक्ति का आयाम, सम्यक अभ्यास पूर्वक पूरक कुंभक रेचक क्रम को करना। यही प्रक्रिया योगी याज्ञवल्क्य ने संहिता आदि सभी ग्रंथों में कही है। प्राणायाम के प्रभाव से मन शरीर के एक भाग पर एकाग्र होने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। प्राणायाम के द्वारा योगी बुद्धि शुद्ध कर और स्पष्ट होकर उसको एक दिशा प्राप्त हो जाती है। मनोयोग से भली भांति प्राणायाम करने पर सारे विचार शुद्ध हो जाते हैं तथा श्रेष्ठ मत एवं धारणाओं का उदय होता है। फिर आता है प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि ने कहा है, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों का अपने विषय शब्द दादियों की ओर न ले जाकर चित्त के स्वरूप के अनुरूप वृत्ति बनाए रखना ही प्रत्याहार है, लेकिन यह सहज नहीं हो सकता। इसलिए योगी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, स्वभाव से ही बहिर्मुख इंद्रिया, सभी जानते हैं कि ये इंद्रिया बाहरमुखी होती है, इंद्रियों को बलपूर्वक अंतर्मुख करना ही प्रत्याहार है। यानी जो कुछ बाहर अनुभव करते हैं और कर्म करते हैं उन सबको भीतर हृदय देश में करना ही प्रत्याहार है। उपनिषद आदि में भी चर्चित उपासना का दूसरा रूप प्रत्याहार है। देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों ने कहा है, 28 मर्म स्थानों में वायु को धारण कर क्रमशः प्रत्येक स्थान से उसको खींचकर हृदय में विलीन करना ही प्रत्याहार है। वे मर्म स्थान है जैसे पैर के अंगूठे, एडी, पिंडली के मध्य भाग, पिंडली, घुटने, जांग, गुदा द्वार, मूलाधार चक्र का स्थान, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, नाशिका, चक्षु, भूमध्य, ललाट और मूर्धा यानी कि मस्तिष्क। उसके बाद आता है धारणा। धारणा शरीर के भीतर या बाहर किसी स्थान विशेष में चित्त का बंधना धारणा है, किंतु योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार अष्टांगों के क्रम में जब सकल इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया जाता है तो धारणा शरीर के भीतर ही हो जानी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, स्थिर व एकाग्र किए गए चित्त को एक स्थान विशेष पर रोक लेना ही धारणा है। उसके बाद सप्तम है ध्यान। मन से आत्म स्वरूप की वृत्ति द्वारा आत्मा को जानना, अनुभव करना ही ध्यान है। इसके लिए क्रम बताए गए हैं। प्रथम सगुण का ध्यान करें जो कि अनेक प्रकार का है, और अंत में लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्गुण ध्यान का अभ्यास करें। समाधि, ध्यान ध्येय ध्याता इस त्रिपुटी का न होकर केवल ध्येयकार वृत्ति मात्र रहने का नाम समाधि है। लेकिन योग्यवल्क्य, समाधि मनुष्य की एक अंतिम अवस्था है। यम नियम से होकर समाधि तक पहुंचने को ही एक परम तत्व परमात्मा से मनुष्य का मिलन हो जाना ही समाधि है। इसी प्रकार हमारे बहुत योगियों ने जो सभी रूप में आए हैं, उन्होंने सभी अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर लिया है। यही हमारी सनातन परंपरा रही है। इसमें गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो वे जोगी, मरो मरण मरण है मीठा, मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दी था। अर्थात हे योगी तुम मरो, मरने से आनंद मिलता है, तुम उसी प्रकार मरो जिस मृत्यु से गोरख ने मरकर ब्रह्म को देखा है। अर्थात हे योगी तुम संसार से विरक्त हो जाओ, इस विरक्ति में आनंद है, तुम उसी प्रकार की विरक्ति प्राप्त करो जैसी गोरख ने प्राप्त की है। सभी को उसी प्रकार से योग का और नियमों का पालन करना।
1: योग और प्राचीन परंपराएं, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। वार्ताकार थे नवीन चौधरी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: सुगम संगीत में आज के फनकार हैं अभिजीत सावंत,

0: सुगम संगीत मैच के फनकार थे अभिजीत सावंत। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
5: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब

0: दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People's

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था, जो उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा, और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किए हैं, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाए हैं, जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है, और उसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है, और AI बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में, अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है,

0: इसके लिए महत्वपूर्ण कहता है, इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रैटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं। इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो 4-in-1 प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है, और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने की काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3,196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया के डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किए हैं इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं, और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा, और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है, उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए,

0: और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा, ARZ डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शेष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान, उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल सखे फिर उसका गाँव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो less than 2 hectare है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 crore जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है, हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है जो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं, और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखने चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शीश, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट की भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शीश, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शीश कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: pack? How are you going about doing it at your level?
1: Yeah, basically, as Dr. Priyanka has mentioned, now we have low GI rice. So very recently, now we have developed low GI maize as well. So low GI essentially means it takes more time for digestion in the human gut. So the availability of the sugar to the blood will be slowly done rather than rapidly enhancing the level of sugars. So we have several breeding methods to develop high yielding low GI rice or low GI maize, or for that matter, low GI other crops as well. So we have definitely some genes which are known for that. And so we'll try to transfer those genes from the donor to our required varieties. And therefore, we will reduce, or rather, I would say, will increase the resistant starch part of it so that the GI or the glycemic index is reduced as compared to the higher ones, which is available in current varieties.
0: Well, taking a cue from what the Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said, food being the medicine with the right approach. It's time for us to thank both our experts, Dr. Priyanka Bansal with ICMR and Dr. Firoz Hussain with IARI for giving us such an in-depth understanding of the Sehat Mission, where strengthening of public health is through prevention and awareness, launched in this joint initiative by ICMR and ICAR. Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you.
0: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Insights.
4: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज़ देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
5: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार,

और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुआवजे की स्थिति की जानकारी हर 3 घंटे में देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समर्ग दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल, कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था निर्मित करना। प्रधानमंत्री मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोग को मजबूत करने के लिए सदस्य देशों की उपस्थिति और निरंतर प्रतिबद्धता के प्रति आभार प्रकट किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कई देश ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स के लिए मानवता को प्राथमिकता देने और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड

0: आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसंबंधों पर आधारित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरों मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच मतभेदों की तुलना में

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गायन, कलाकार हैं नारायण झा, आप सुनेंगे राग जोग। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आपने सुना गायन कलाकार नारायण झा। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण

0: आकाश
1: मीडियम वेव 333.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:17 हो रहे हैं। यहीं पर संपन्न होती हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।